0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्त पानी के पास स्थित माँ कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का 4th युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का ये पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्र मौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का मौका मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और पुरस्कार प्रदान किए और उनके प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों की भागीदारी वाली खेल प्रतियोगिता की सफल मेजबानी दिल्ली सरकार के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Hello and welcome to the daily highlights of Commonwealth Game 2026 Glasgow. My name is Munish Jolly and I have somebody who's smiling with that impressive performance in Glasgow, Megha.
1: Shukriya Manish. क्यों ना शुरुआत करें कल खेले गए मुकाबलों से। जूडो में तीन भारतीय खिलाड़ियों इशरूप, अवतार और यश ने मेडल की दावेदारी पेश की। पहले बात करते हैं विमेंस 78 केजी कैटेगरी की, तो इशरूप नारंग ने कनाडा की कॉरली गॉड बाउट को कड़ी चुनौती दी, लेकिन उनका सफर पोडियम से बस एक कदम पहले थम गया और वो ब्रॉन्ज मेडल से चूक गई। इशरूप ने इससे पहले रेपेशाज राउंड में कैमरून की जॉर्जिका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल की रेस में वापसी की थी। अपने कैंपेन की शुरुआत में इशरूप ने राउंड ऑफ 16 में स्कॉटलैंड की निकोल वुड के खिलाफ गोल्डन स्कोर में यू को हासिल करके एक रोमांचक जीत दर्ज की थी। हालांकि क्वार्टर फाइनल्स में इंग्लैंड की एमा रीड के खिलाफ इपॉन से हारने के बाद उनका गोल्ड मेडल का सपना टूट गया था। वहीं मेंस कैटेगरी में दोनों भारतीय खिलाड़ियों को राउंड ऑफ 16 के कठिन मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। 100 किलोग्राम भार वर्ग में अनुभवी अवतार सिंह साइप्रस के माइकल एरिस्टोस को गोल्डन स्कोर तक ले गए, अंत में इपॉन का शिकार हो गए। जबकि 100 प्लस किलोग्राम हैवी वेट्स में यश घांगस को वेल्स के जोशुआ व्हाइट हाउस के विरुद्ध 1-0 की करीबी हार झेलनी पड़ी।
0: So Megha, it's time now to move on to the cycling velodrome. It's named after one of the legends, Sir Chris Hoy. And that is where India cycling contingent was competing. Harshveer Singh Sekhon finished 19th in men's individual pursuit, but it was the sole para-cyclist, Lisha Das. Despite of being without the regular aerodynamic skin suit, without a female support person available to assist her, she managed to win the hearts of those in the velodrome. She finished 6th and last in the women's 4,000 meter pursuit qualification, clocking 6 minutes and 58 seconds, averaging 34.45 kilometers an hour. But she surely won the hearts of everyone at that velodrome, because she fought polio for a long time and she completed her ambition of representing the nation and taking the tricolor to a different level.
1: अब बात करते हैं भारत के गेम्स में ओवरऑल परफॉर्मेंस की।
0: Why don't we start with the sport that got us the maximum gold, 7 of them, and of course speaking about boxing, with 14 boxers and equal number of representations in men and women categories, India delivered a historical show at the Commonwealth Boxing Arena at Scottish Events Campus Centre at Glasgow, Scotland. The boxers did the country proud by winning 7 golds out of 13 won by the Indian contingent overall, with 3 silver medals added by the other boxers. It was a contribution of more than 25% of medals for the Indian contingent, with 10 out of 39 won by Indian boxers. On Saturday, the 1st of August, India had lined up 10 boxers in finals of different categories. Preeti Pawar, who was the first female athlete to be appointed directly to Naib Subedar in the Indian Army, introduced to boxing by her uncle at the age of 14, she was a champion already, and she's a former Asian Games bronze medalist. She started the gold rush with a strategy-filled bout victory over Canada's Scarlett Savannah Delgado in women's 54-kilogram category. Immediately after that, Jasmine Lamboria defeated Commonwealth Games champion Michaela Walsh of Northern Ireland in the 57-kilogram category for the second gold from boxers. The Manipuri sensation in boxing continued in the form of Jadumani Singh, who snatched attention from many during his stint in Commonwealth Games Glasgow. Though he lost to the 21-year-old Aussie Jai Dixon, he assured that Manipur's legacy of producing quality boxers continued. On the same day, Sakshi Chaudhary commanded the proceedings in the ring against her opponent Ruby White of England, winning the gold in 51-kilogram category with ease. Priya Ghangas then gave the fourth gold from boxing after getting past Canada's Mary Bathol Almadehi in a tough final in 60-kilogram category. It was then the turn of Arundhati Chaudhary, who stood firm against world's bronze medalist Chantal Reid, outboxing her to win gold in 70-kilogram final. With 4 golds and a silver, the Indian women boxers were on a spree. Hence, the expectations rose as former Olympic bronze medalist and somebody who's won the medals in World Championships, Asian Games, Asian Championships, Lavlina Borgohain stepped for the 75-kilogram final versus 2-time world's medalist Emma Sue Greentree of Australia, but she lost a real close bout. Lovlina had an early exit at Birmingham Commonwealth Games, but the decorated boxer did not look convinced even after winning the silver. India's fifth gold in boxing was the first gold from a male boxer. Sachin Sivaj win a gold in a tremendous comeback, third round finish versus try again Morning Ndivelo of Namibia. It was then the turn of Ankush Panghal to grab gold against England's Dimeji Shitu for the men's 80kg final. He had a poor first round but then came back strongly in the next two rounds to outsmart Shitu and win the gold superbly. In the final medal bout in boxing for India, Narinder from Hisar, Haryana had a tough fight against England's Damir Thomas in the 90kg men's category. The two boxers slugged it out before Damir came out victorious. On this historic performance of Indian boxing in Commonwealth Games 2026, let's hear from the president of the Boxing Federation of India, Mr. Ajay Singh.
2: It has been a historic last 2 days, winning 7 golds and 3 silver medals. This is the largest ever number of golds and the best performance of any country ever in the 100-year history of the Commonwealth Games.
1: मुनीश, अब बात करते हैं एथलेटिक्स की। भारत का सबसे बड़ा दल एथलेटिक्स में उतरा, जिसमें कुल 32 खिलाड़ी शामिल थे, 22 पुरुष और 10 महिला। भारत ने एथलेटिक्स में अपना अब तक का सबसे शानदार कॉमनवेल्थ गेम्स कैंपेन दर्ज किया, जिसमें एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स को मिलाकर कुल रिकॉर्ड 16 मेडल्स हासिल किए। इनमें से 10 मेडल्स एबल बॉडीड इवेंट्स और 6 पैरा इवेंट्स में आए। मेंस जैवलिन में नीरज चोपड़ा ने 85.83 मीटर के सीजन बेस्ट थ्रो के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स डेब्यूटांट यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर्स का पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड करते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में गुलवीर सिंह ने भारत के लिए सबसे शानदार इंडिविजुअल कैंपेन्स में से एक पेश किया। उन्होंने 10,000 मीटर्स 27 मिनट्स 49.78 सेकंड्स में पूरा करके सिल्वर जीता और इसके बाद 5,000 मीटर्स में 13 मिनट्स 24.95 सेकंड्स का समय लेकर ब्रॉन्ज अपने नाम किया। इसके साथ ही वो कॉमनवेल्थ गेम्स के एक ही एडिशन में 2 ट्रैक मेडल्स जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। भारत को जंपिंग इवेंट्स में भी जबरदस्त सफलता मिली। सर्वेश कुशारे ने मेंस हाई जंप में सिल्वर हासिल किया, जबकि मुरली श्री शंकर ने लॉन्ग जंप में लगातार दूसरा कॉमनवेल्थ गेम सिल्वर अपने नाम किया। ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने सिल्वर जीता और सिल्वा प्रभु ने ब्रॉन्ज हासिल कर भारत का डबल पोडियम पूरा किया। प्रवीण के लिए ये जीत बेहद खास रही, जो बर्मिंघम 2022 में सिर्फ 3 सेंटीमीटर से ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए थे। उधर तेजस्विन शंकर ने डिकैथलॉन में ब्रॉन्ज जीता और इस कठिन 10 इवेंट कॉम्पिटिशन में कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल हासिल करने वाले

0: पहले भारतीय बन गए। सीमा काली रमना ने विमेंस डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज अपनी झोली में डाला। हालांकि कुछ परिणाम गेम से पहले की उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे। नेशनल रिकॉर्ड होल्डर गुरिंदर वीर सिंह 100 मीटर्स के हीट्स में ही बाहर हो गए। अनिमेश कुजूर ने अपना 200 मीटर हीट जीतकर प्रभावित किया, लेकिन वह सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ सके। तेजस शिरसे गेम से पहले के अपने बेहतरीन फॉर्म को 110 मीटर हर्डल्स में मेडल में तब्दील नहीं कर पाए, जबकि पारुल चौधरी 3000 मीटर और 5000 मीटर स्टीपल चेज दोनों में पोडियम से बाहर रही। पैरा एथलेटिक्स में भारत को 3 गोल्ड मेडल्स और 2 यादगार 1-2 फिनिश हासिल हुई। शर्मिला धनकर ने विमेंस F57 शॉटपुट में भारत की पहली कॉमनवेल्थ गेम्स पैरा एथलेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट बनने का गौरव हासिल किया। शिल्पा के शायला को ब्रॉन्ज अवार्ड किया गया। इसके बाद दिलीप महादुगावित ने मेंस T47 100 मीटर में 10.71 सेकंड्स के गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीता, जबकि मोहम्मद बासिल ने सिल्वर अपने नाम किया। भारत ने अपने पैरा एथलेटिक्स कैंपेन का अंत F57 शॉटपुट में एक और डबल पोडियम के साथ किया। सुमान राणा ने गोल्ड जीता, जबकि शुभम जुयाल ने सिल्वर हासिल किया, जो भारतीय एथलेटिक्स के इस ऐतिहासिक कैंपेन का बेहद शानदार अंत रहा।
1: Now let's move on to weightlifting. India fielded an 11-player contingent in weightlifting, spearheaded by world champion Mirabai Chanu, who impressed all by lifting 85 kilogram Commonwealth record and a games record in snatch and a games record of 105 kilogram in clean and jerk with a total of 190 kilogram, a games record winning gold in 48 kilogram category. But it was heartening to see Gyaneshwari Devi clinching the silver in 53 kilogram category with a 199 kilogram national record that she created in Glasgow. Bindya Rani Devi's bronze medal, Harjinder Kaur's 227 kilogram silver medal victory were the highlights as far as the women weightlifters were concerned. Moving on to the men's category, Rishikanta Singh created a games record in snatch when he lifted 121 kilograms and a total of 264 kilograms with 143 in clean and jerk, got a silver for India. Muthupandi Raja got a silver in 65 kilogram category. Ajay Babu got a silver in the 79 kilogram category. And Lovepreet Singh in the 110 kilogram category got a silver. पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का नाम तब रोशन हुआ जब बिहार के झंडू कुमार ने इतिहास रचा। मेंस हेवीवेट में तीसरे स्थान पर आए और भारत को 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला मेडल दिलाया। ये भले ही ब्रॉन्ज मेडल था, लेकिन बचपन से ही पोलियो का शिकार हुए झंडू कुमार ने ये साबित तो कर दिया कि शरीर की कमजोरी इरादों की मजबूती के आगे कुछ नहीं।
0: ग्लासगो में भारतीय जूडो दल ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। अस्मिता डे ने महिला 48 किलोग्राम भार वर्ग फाइनल में कनाडा की हेदी क्वाश को गोल्डन स्कोर में हराकर भारत की पहली कॉमनवेल्थ गेम्स जूडो चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। इसके बाद हर्ष सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया और कॉमनवेल्थ गेम्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष जूडोका बन गए। यामिनी मौर्या ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग के बेहद कड़े गोल्डन स्कोर फाइनल में इंग्लैंड की एसेलिया टॉपराक के खिलाफ खेलते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं उन्नति शर्मा ने महिलाओं के 63 किलोग्राम भार वर्ग में साउथ अफ्रीका की स्काई को महज 67 सेकंड्स में इपॉन से हराकर ब्रॉन्ज जीता और भारत का 4 मेडल टैली पूरा किया। भारत के लिए ये 2 गोल्ड मेडल्स ग्लासगो को जूडो के इतिहास में एक ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू एडिशन बनाते हैं।
1: अब बात करते हैं लॉन बोल्स की। 4 इवेंट, 6 एथलीट्स। पुरुषों की जोड़ी नवनीत सिंह और दिनेश कुमार, इन्होंने ग्रुप स्टेज में लगातार 4 जीत के साथ मजबूत शुरुआत की, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ एक अहम टाई ब्रेक हारने के कारण वे मेडल राउंड में नहीं पहुंच पाए। पुरुषों का सिंगल्स पुतुल सोनोवाल के द्वारा भारत ने खेला। इन्होंने अपने पहले मैच में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन रायन बेस्टर, जो कनाडा के हैं, उनको एक रोमांचक टाई ब्रेक में हराकर सुर्खियां बटोरी। महिलाओं की जोड़ी रूपा रानी तिर्की और पिंकी की थी, मेडल की दौड़ में शामिल होने के लिए आगे नहीं बढ़ पाई। यानी लॉन बोल्स इवेंट में इस बार कोई मेडल हासिल नहीं हुआ।
0: 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल में भारत की महिला टीम ने अपना कॉमनवेल्थ गेम्स डेब्यू किया, लेकिन अपने तीनों ग्रुप मैचेस हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई। वहीं आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक

0: में भी भारत बिना किसी मेडल के वापस लौटा। इसके अलावा स्विमिंग में भी भारत को कोई मेडल नहीं मिला।
1: Well then, the Commonwealth Games 2026 have come to an end. Australia topped the final medal standings at the Commonwealth Games with 70 gold medals and 170 medals in all. India finished fourth with 13 golds, 17 silvers and 9 bronze medals.

0: का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज से लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
3: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को कटक के पास बनारा में जगत गुरु कृपालु

0: विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक एक विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी और फिर सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तप्तपाणी जाएंगी, जहां वो माँ कांधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो रात में गोलाबंध स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रुकेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की लगभग 40 प्लाटून तैनात करके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निर्धारित स्थलों के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आजकल के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
2: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर 2 विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर एक आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। यह विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को निकाले जाने की परंपरा है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पाल की जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।
3: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा, जबकि शाम 4 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचेगी। यहां शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए शाम 7:00 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया।

0: समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरि रंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कई गुना ज्यादा, तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मानसून से जुड़ी खबरें सबसे ऊपर छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का पहला शीर्ष समाचार है, नशे के खिलाफ देश ने 100 सप्ताह की जंग छेड़ी। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को सुर्खी बनाया है, ड्रग्स दुश्मन देशों की साजिश। नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण ने भी प्रधानमंत्री की कही इसी बात को शीर्ष समाचार बनाया है, जबकि जनसत्ता ने अमेरिका ईरान युद्ध के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमले रोकें बशर्ते शीघ्र हो करार। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धि के समाचार को शीर्षक दिया है, इस बार हमारे 54% गोल्ड बॉक्सिंग में आए, कुल मेडल में से 69% सिर्फ 3 खेलों में जीते। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, हादसों के हाईवे पत्र सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सवाल करता है कि जब वैकल्पिक ईंधन और वाहनों की प्रदूषण जांच सरकार की प्राथमिकता है तो ऐसा ही अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्यों नहीं चलाया जाता। पत्र का कहना है कि बीते गुरुवार को लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो डराने वाले हैं। कश्मीर में हथियारों से लैस 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के समाचार को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। पुलवामा जिले में एक आतंकी से हैंड ग्रेनेड, राष्ट्र विरोधी पोस्टर और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने की खबर को पत्र ने बॉक्स में प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बारामूला में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हाल चाल है जनाब के? आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर आप है मेरे साथ बिल्कुल लाइव 107.1 आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, और साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं हमारी मोबाइल ऐप पर जो प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप है, न्यूज ऑन एयर पर बिल्कुल लाइव, और कार्यक्रम है हेलो मुंबई। कैसे हैं आप? मस्त मुंबई, मस्त लोग, मस्त बातें और मस्त है गीत, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है। तो आपको हेलो मुंबई करते हुए हम शुरुआत कर रहे हैं इस कार्यक्रम की, जहां पर आज हम आपको बताएंगे क्यों है आज का दिन खास और क्या बनाता है आज के दिन को सुपर स्पेशल। और साथ ही साथ अगले घंटे में आपको बताएंगे है प्रीत जहां की रीत सदा के अंतर्गत, तो आज इस महीने के बारे में कुछ खास बातें। तो आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ बने रहना है, और साथ ही साथ इन गानों की जो थिरकन है ना, उसके ऊपर आपको थिरकना है, नाचना है, गाना है, खूब मजे करने हैं, और जो मंडे ब्लूज कहते हैं ना, उन मंडे ब्लूज को ऐसे धक्के मार के निकालना है अपनी लाइफ से, एकदम फ्रेश तरो ताजगी भरी शुरुआत करनी है, क्योंकि ये अगस्त का महीना कुछ खास होता है।

0: तेरे।
1: जब सीधी और टेढ़ी उंगली से घी ना निकले तो बीच का रास्ता अपनाना चाहिए।
2: उंगली पे

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प.
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू.
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ.
0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.

और आपने ऐसी कौन सी दुआ मांगी थी जो कबूल हो गई और आपको मिल गई वो चीज जो आप तहे दिल से चाहते थे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार मुंबई। भाई उठ जाइए, जागिए, ऑफिस जाने का वक्त आ गया है, स्कूल जाने का वक्त तो ऑल

रेडी जा चुका है, बच्चे स्कूल पहुंच भी गए होंगे और लग गई होंगी सारी की सारी मम्मियां और बीवियां फटाफट से अपने अपने पतिदेवों को ऑफिस भेजने के काम में, फटाफट से यहाँ वहाँ काम। और ऐसे में अगर सुकून के दो पल मिल जाए हमारे गीतों के जरिए तो भाई सुबह जो है वो सुहानी हो जाएगी। आप ड्राइव कर रहे हैं, ऐसे में आपकी पसंद का कोई फेवरेट गाना आ जाए तो भाई आप का मंडे तो बहुत फंडे होने वाला है, एकदम एनर्जी से चार्ज अप हो जाएंगे। तो कोशिश यही कर रही हूँ कि आज जो है आपको ऐसे फास्ट बीट नंबर सुनाऊं सुबह सुबह कि आप एकदम तरोताजगी से भर जाएं। जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। वैसे आज है सावन का पहला सोमवार, लेकिन आज के दिन इतिहास में हुआ था बहुत कुछ खास, और इतिहास की वो खास बातें लेकर मैं हूँ आज आपके साथ। फॉर एग्जाम्पल, आज ही के दिन साल 2004 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान मैसेंजर बुध ग्रह के लिए रवाना हुआ था। इसके साथ साथ और बहुत कुछ हुआ था। आज का ये जो दिन है ना, उसमें इतने सारे लोगों के जन्मदिन आते हैं कि क्या ही बताऊं आपको। तो चलिए आज इन सब लोगों के बारे में जिनका जन्मदिन है कुछ कुछ छोटी मोटी बातें आपको बताती रहूंगी, और साथ ही साथ क्यों है इतिहास की दृष्टि से आज का दिन खास ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल तो चलिए मलकीत सिंह पाजी के साथ थोड़ा नचलें, क्या ख्याल है आपका?

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: Cosmos Digital Banking Seva, Asan aur Surakshit.
2: Internet Banking,
1: Mobile Banking,
2: WhatsApp Banking,
1: EKYC,
2: NEFT, RTGS,
1: IMPS,
2: Cosmos Rupay aur Visa Debit Card,
1: UPI jaise kai sare digital sevaon ka laabh lene ke liye, aapka account Cosmos Bank mein zaroor hona chahiye.
2: Cosmos Cooperative Bank, enriching life.
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर, आकाशवाणी FM Rainbow
0: 107.1 MHz, musically yours.

आप क्या दुआ मांगते हैं? भाई हम तो ये दुआ मांगते हैं कि हमारा और आपका साथ बरसों बरस बस यूं ही चलता रहे। और उस साथ में हमारा साथ दे रहे हैं प्रमोद खरखनिस जी, पंकज महौर जी, विजेंद्र घटोल जी, शुभलक्ष्मी मस्तकर जी, दीपा पालकर जी, प्रमोद चिंचोलकर जी, महेश बोहरा जी, प्रणव शिंदे जी, विश्वास चांदोरकर जी, रजनीकांत पाटिल जी, फिरोज सिकंदपुरिया जी, किशोर नायक जी, हितेंद्र दास जी, थैंक यू सो मच हमें इतने सारे सुबह सुबह मैसेजेस करने के लिए, हमें फ्रेंडशिप डे विश करने के लिए। आप सबको भी दोस्ती का ये खास दिन बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन मुझे लगता है कि दोस्ती सेलिब्रेट करने के लिए हमें किसी फ्रेंडशिप डे का वेट नहीं करना चाहिए। हम जब चाहे अपने दोस्तों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे कह सकते हैं, बल्कि सही मायने में तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे उस दिन होता है जब आपके दोस्त से आपकी वो पहली वाली जिगरी वाली दोस्ती हो जाती है। यानी कि आपके स्कूल डेज में जब आपने स्कूल में एंट्री ली तब आपका फ्रेंडशिप डे, जब आपने कॉलेज में एंट्री ली वहाँ नए फ्रेंड्स बनाए वहाँ आपका हैप्पी फ्रेंडशिप डे, जब आपने अपनी सोसाइटी के दोस्तों के साथ में खेलना कूदना उनके साथ में सब चीज़ें शेयर करना शुरू किया तो वो फ्रेंडशिप डे, जब आपने पहली बार किसी को अपने दिल की बात बताई तो वो फ्रेंडशिप डे। तो हर रोज़ हर दिन हर पल हर लम्हा एक फ्रेंडशिप डे होता है। तो ऐसे में हम किसी एक दिन के लिए इंतज़ार क्यों करें अपने दोस्तों से ये कहने के लिए कि हैप्पी फ्रेंडशिप डे, या फिर उन्हें फ्रेंडशिप्स बैंड देने के लिए। मुझे लगता है हम जब चाहे जब मन आए ना, जब किसी दोस्त की बात से दिल खुश हो जाए उसको बोलना चाहिए यार तू ही मेरा सच्चा दोस्त है, हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे। आपको क्या लगता है? वैसे आपको ये बताऊं कि आज का दिन इतिहास में है बहुत खास, क्योंकि आज ही के दिन साल 2007 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुआ था रूसी अंतरिक्ष यान प्रोग्रेस M61 और वो सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में पहुंच गया था। और इसके अलावा आपको मैं बताने वाली हूँ आज है किन खास

लोगों का जन्मदिन। बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल आपके लिए ये एक खूबसूरत सा गीत, सुनते रहिए हमारे साथ 107.1 FM रेनबो आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूं ममता सहगल आपके साथ साथ।

भाई आई एम श्योर इस ढिंक चिका के साथ तो आप भी ढिंक चिका कर ही रहे होंगे और बहुत मज़े ले रहे होंगे, और ये आपके मैसेजेस से हमें बिल्कुल साफ हो जाता है कि आप बहुत बहुत बहुत एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जी हाँ विजेंद्र जी, हम आपके दोस्त

बिल्कुल है पंकज मोहर जी, थैंक यू सो मच। इब्राहिम जी थैंक यू सो मच। सरोज पाटिल जी, आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है, आपको गीत पसंद आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। और प्रणव शिंदे जी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि दोस्ती तो हर दिन मनाई जानी चाहिए। श्रेया राउत जी थैंक यू सो मच, आपके पूरी टीम को, मिलेश गजानन जी, श्रेय मिलेश राउत जी, आर्य मिलेश राउत जी, टिगरे पारा से, थैंक यू सो मच हमें मैसेजेस करने के लिए। और

करते अभिषेक पयोध है बलिहारी से वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सतगुण मूर्ति सर्वेश की। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं, खड़ी बोली में लिखी जाती हैं, लिखी गई हैं और ये इसी के कवि हैं। कौन है ये, क्या आप जानते हैं इन्हें? बताइए बताइए, अगर आप जानते हैं तो हमें बताइए, फटाफट से हमें मैसेज कर दीजिए और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये किन की रचित कविता है। फिलहाल आपके लिए एक बेहद खूबसूरत सा गीत।

0: Sunny FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
2: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

जी, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और इनमें सबसे पहले नाम आता है प्रणव शिंदे जी का। जी हाँ, ये कवि मैथिली शरण गुप्त साहब की कविता थी जो मैंने आपको अभी अभी पढ़कर सुनाई थी और बहुत ही खूबसूरती के साथ वो लिखते थे। काफ़ी जाने माने कवि हैं और आज है उनकी उनका जन्मदिन। भले ही वो हमारे बीच नहीं है लेकिन उन्होंने जितनी भी हमारे लिए कविताएँ लिखी, जो भी हमारे लिए लिखा, वो सब आज हमारे बीच है, जिसे हमारी जनरेशन जब पढ़ती है, हमारे जो युवा लोग हैं वो पढ़ते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। स्वराज, इसके ऊपर भी उन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। जो पर पदार्थ के इच्छुक हैं, जो चोर नहीं वो भिक्षुक हैं, हमको स्व पद विहीन कहीं है, स्वयं राज्य भी इष्ट नहीं। ऐसी बहुत खूबसूरत कविताएँ जो हैं उन्होंने लिखी हैं, ऐसी बहुत खूबसूरत रचनाएँ जो हैं वो उन्होंने लिखी है और डेफिनेटली हमारे साहित्य के लिए जो है ये बहुत बहुत बहुत ही ज़्यादा सम्माननीय व्यक्ति हैं। इनका जो जन्म है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था और वैसे इनकी जो बर्थ डेट है उनको उसको लेके कहीं ना कहीं बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। कहीं कहीं पर उनकी 1846 लिखी है, कहीं पर 1886 लिखी है, लेकिन तारीख जो है वो आज की ही है। इनकी जो प्रमुख रचनाएँ हैं उनमें शामिल है साकेत, भारत भारती, यशोधरा और जो इनके अन्य खंड काव्य हैं उसमें है जयद्रथ वध, पंचवटी, रंग में भंग। इन्हें पद्मभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया।

था। तो इन्हें जो है हमारा शत शत नमन। फिलहाल आपके लिए एक और खूबसूरत सा गीत, बने रहिए हमारे साथ यही 107.1 FM रेनबो पर, आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूं ममता सहगल आपके साथ।

0: फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको मैं सुनाऊंगी एक बेहद खूबसूरत गजल, मेरी जुबानी, किसी और का लिखा हुआ है, और आपको पहचानना है कि वो किन्होंने लिखा है, क्योंकि आज उनका भी जन्मदिन है। चलिए मैं अभी आपको जो है एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपसे करती हूँ मुलाकात। बने रहिए हमारे साथ यहीं इसी फ्रिक्वेंसी पर।
1: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
2: अपने व्यापार

0: की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 1455 वर कॉल करा.
1: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्युझिकली योर्स.
2: तो चलिए अभी मैं आपको सुनवाती हूँ एक खूबसूरत सी गजल. आप बताइएगा कि ये किनकी लिखी हुई है. कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती, कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती. आप आते हैं तो महफिल में चिराग जलते हैं, आप आते हैं तो महफिल में चिराग जलते हैं, आपके घर में भी क्या रात नहीं होती. चांद तारों की तरह हम भी चमकते लेकिन, चांद तारों की तरह हम भी चमकते लेकिन, आपके शहर में बरसात नहीं होती. कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती.

0: संगति।
1: कई लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना, दत्ता केदार जी पंढरपुर से, लेकिन आपका जवाब जो है वो गलत है। शुभलक्ष्मी मस्तकर जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। महेश बोहरा जी, बिल्कुल सही जवाब। पंकज मोहट जी, बिल्कुल सही जवाब। और प्रणव शिंदे जी, एज यूजुअल बिल्कुल सही जवाब। तो ये जो मैंने आपको अभी सुनवाई थी चंद लाइनें, ये हैं शकील बदायूनी साहब की लिखी हुई। चलिए उनका एक और कलाम मैं आपको सुनाती हूँ। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। जब कभी जिक्र हुआ सादगी बर्क का, याद आए हमें वो शाम पे रोना आया। मुझको समझा ना किसी ने भी मोहब्बत की जुबां, लोग कहते रहे और काम पे रोना आया। हमेशा दिल के एहसासों को बयां करती हुई ये जो अल्फाज हैं, हमेशा ऐसे ही लिखते थे शकील बदायूनी साहब, जो हिंदी सिनेमा के दिग्गज गीतकार और उर्दू के शायर थे। संगीतकार नौशाद जी के साथ उनकी जो जोड़ी थी वो काफ़ी सफल रही। उन्होंने मुगले आज़म, मदर इंडिया, बैजू बावरा जैसी कई फिल्मों में अमर गीत लिखे और उन्हें लगातार जो है बेस्ट लिरिसिस्ट का पुरस्कार भी मिलता रहा। उन्होंने जो है अपने शुरुआती दौर में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की और दिल्ली के एक आपूर्ति विभाग में बतौर क्लर्क काम भी किया। 1944 में वो फिल्मों में गीतकार की इच्छा लेकर हमारे शहर में आए, हमारे इस मुंबई में आए जिसे तब बॉम्बे कहा जाता था। और उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म दर्द इससे ज़बरदस्त सफलता हासिल की। चौधरी का चांद, 20 साल बाद, घराना, मेरे महबूब, उनमें लिखे हुए गीत जो थे वो लोगों के दिलों पर यूँ दस्तक दे गए कि ये सबके दिलों पर राज करने लगे। उन्होंने गीतों के अलावा बहुत सारी गज़लें भी लिखी जो दिल को छूती थीं। तो चलिए आपको अब सुनवाते हैं कुछ और खास गीत। बने रहिए हमारे साथ यहीं आकाशवाणी के

0: भाई घोड़ी पे तो चढ़ेंगे, जरूर चढ़ेंगे और जहां अपनी मंजिल है वहां तक जाएंगे, लेकिन जानवरों को परेशान करना और इस तरह से तंग करना ये अच्छी बात नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, अपनी 11 नंबर की बस यानी कि अपने पैरों का इस्तेमाल कीजिए और जहां जाना है वहां पे वॉकिंग करके जाइए, आपकी सेहत भी बन जाएगी। क्या ख्याल है भाई? फ्रेंडशिप के इस महीने में आप अपनी दोस्त की ये बात तो मान ही सकते हैं, जहां तक हो सके कारपूल वगैरह कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, इससे प्रदूषण भी कम होगा, ईंधन भी कम लगेगा, आपकी पॉकेट की बचत भी होगी, है ना? सही बात है ना? तो चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के उस पार मैं आपको बताऊंगी कुछ खास बातें। बने रहिए हमारे साथ यहीं 107.1 FM रेनबो पर, आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूं ममता सहगल आपके साथ, साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पे।
1: आकाशवाणी FM रेनबो।

0: 107.1 MHz, musically yours.
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मो स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
2: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मो स्मॉल बिजनेस लोन
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

और अब चाहूंगी आपसे इजाजत इस घंटे का आखिरी गीत जो है वो आपको सुनवाने की, क्योंकि अगले घंटे ठीक 10 बजे होंगे समाचार हमारे मुंबई केंद्र से और समाचारों के उस पार नमस्ते मुंबई के साथ मैं एक बार फिर रहूंगी आपके साथ साथ। और आज हम किस बारे में बात करेंगे उसके बारे में जानने के लिए तो भैया आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, तो बस बने रहिए हमारे साथ इस घंटे का ये आखिरी गीत के उस पार समाचार।

0: रानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, 107.1 एफएम रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर, बिल्कुल लाइव हमारे मुंबई स्टूडियो से। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के समाचारों की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया है। कल एक राष्ट्रव्यापी वीडियो कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने 28,000 से अधिक स्थानों से जुड़े 1 करोड़ से अधिक युवाओं सहित विविध सभा का औपचारिक रूप से अभिवादन किया। नशा मुक्त विकसित भारत संकल्प अभियान के मूल उद्देश्य को रेखांकित करते हुए श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत को प्राप्त करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सशक्त और आत्मविनाशकारी आदतों से पूरी तरह मुक्त अत्यधिक आत्मविश्वासी युवा पीढ़ी की आवश्यकता है। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी। सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC इस महीने की 6 और 7 तारीख को मुंबई में ब्रिक्स वेव्स बाजार का आयोजन करेगा। इस आयोजन में ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देशों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो सरकारों, उद्योग निकायों, निर्माताओं, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म, प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और रचनात्मक उद्यमों का प्रतिनिधित्व करेंगे। समाचारों में आगे है, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कल एक शांति रैली के दौरान पुलिस स्टेशन पर हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 14 लोग मारे गए और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। स्वात जिले के काबुल शहर में पुलिस स्टेशन के ठीक सामने चल रही स्वात शांति रैली के दौरान यह धमाका हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी फिलहाल किसी गुट या व्यक्ति ने नहीं ली है। रेस्क्यू 1122 स्वात के प्रवक्ता ने बताया कि 9 शवों को सैदू शरीफ के सेंट्रल हॉस्पिटल भेजा गया। वहीं काबुल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने 5 और लोगों की मृत्यु की पुष्टि की है। इससे मरने वालों की कुल संख्या 14 हो गई है। समाचारों के अंत में खेल जगत से समाचार। ग्लासगो में कल रात राष्ट्रमंडल खेलों के समापन के साथ ही 2030 में अहमदाबाद राष्ट्रमंडल खेल के लिए उल्टी गिनती आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। समापन समारोह के दौरान भारत ने दुनिया को अहमदाबाद आने का न्योता दिया। इस दौरान प्राचीन दर्शन, आधुनिक कला और सांस्कृतिक भव्यता का अनूठा संगम देखने को मिला। इस हस्तांतरण प्रस्तुति के साथ ही 2030 में होने वाले खेलों के शताब्दी संस्करण की यात्रा आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। आप बने रहिए आकाशवाणी FM रेनबो की मुंबई प्रसारण सेवा के साथ।
0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली।

वेलकम बैक 107.1 एफएम रेनबो। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, मैं हूं ममता सहगल आपके साथ लेकर कार्यक्रम नमस्ते भारत। और नमस्ते भारत में आज जो है मैं आपसे करने वाली हूं बहुत सारी खास बातें भाई। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अब ये कौन सा महीना चल रहा है, हम सब जानते हैं अगस्त का महीना चल रहा है, लेकिन अगस्त के महीने में शुरुआत हो गई है सावन की, तो सावन के महीने की क्या ख़ास बातें होती हैं आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। और आज है सावन के महीने का पहला सोमवार, और सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा की बहुत महत्वता मानी गई है हमारे वेदों और पुराणों में, तो क्या मान्यताएँ हैं इसके बारे में मैं कुछ बताने वाली हूँ। सबके अपने अपने बिलीव्स होते हैं, सबके अपने अपने यकीन विश्वास होते हैं, तो बस उन्हीं से जुड़ी कुछ बातें मैं आज आपके सामने पेश करने वाली हूं, और कुछ वैसे ही प्यारे प्यारे से गीत भी आपको इस घंटे में सुनाने वाली हूं, और आपको बताने वाली हूं कि इस महीने आपको कौन से त्योहारों का जो है मजा उठाने का मौका मिलेगा, क्या सेलिब्रेशन आप कर सकते हैं, बस ये सब जानने के लिए आपको रहना होगा हमारे साथ।

तो हम बात कर रहे थे सावन के महीने की। उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो उत्तर भारत में परसों से सावन के महीने की शुरुआत हो गई थी और आज है सावन के महीने का पहला सोमवार, जहां भक्तजन जो हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो शंकर भगवान को बहुत मानते हैं, वो आज के दिन मंदिरों में जाकर उनका जलाभिषेक करते हैं। लेकिन वहीं हमारे महाराष्ट्र में जो है सावन का महीना वो 13 तारीख से मनाया जाता है। लेकिन साथ ही साथ सावन के महीने में बहुत सारे जो है ऐसे शुभ दिन आते हैं जिस दिन कई शुभ कार्यों की शुरुआत की जाती है। सुहागने अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं और सावन के गीत भी गाती हैं। तो ये है खूबसूरती सावन के महीने की। अब जब बारिश होती है तो हर तरफ हरियाली देखने को मिलती है, इसलिए सावन के महीने को हरे रंग के साथ जो है पैरव भी किया जाता है और जो सुहागने हैं वो मेहंदी तो लगाती ही हैं, साथ ही साथ हाथों में हरी हरी चूड़ियां भी डालती हैं। और हरी हरी चूड़ियों का जो सीधा संबंध है वो सुहाग के साथ माना जाता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे। ब्रेक के उस पार हम बहुत सारी बातें आपके साथ करने वाले हैं, तो बस आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए कुछ खास बातें हमारे देश से, हमारी संस्कृति से, हमारे कल्चर से जुड़ी हुई। बने रहिए हमारे साथ।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प.
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू.
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक.

हंसराज रघुवंशी की आवाज में पार्वती बोली शंकर से बेहद खूबसूरत सा गीत अभी आपने सुना यही 107.1 FM रेनबो पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं हमारी प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर बिल्कुल लाइव हमारे मुंबई स्टूडियो से। तो भाई जो ये सावन का महीना होता है, ये जो महीना होता है वो प्रकृति के श्रृंगार सुहाग और उल्लास से जुड़ा हुआ होता है। ऐसी मान्यता है हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार कि इसी महीने समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष शिवजी ने पिया था और माता पार्वती ने उन्हें पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। और भगवान विष्णु जब योग निंद्रा में चले जाते हैं तब शिवजी ही सृष्टि का संचालन संभालते हैं। तो ये तो है हमारी पौराणिक और धार्मिक मान्यताएं। वैसे आपको ये बताऊं कि संसार की रक्षा के लिए शिवजी ने नीलकंठ बनकर विष पिया और उनकी जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया, जिससे सावन में जलाभिषेक की परंपरा जो है वो शुरू हो गई। माता पार्वती ने शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए सावन में ही कठोर तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उनकी मनोकामना पूरी की थी। और इसी मनोकामना के साथ बहुत सी लड़कियां हमारे देश में सोमवार का व्रत रखती हैं, खासतौर पर सावन के महीने में, ताकि उन्हें भी माँ पार्वती के जैसे अपनी पसंद का वर मिल सके। और ये जो गीत मैंने आपको सुनाया वो कहीं ना कहीं माँ पार्वती की उन्हीं फीलिंग्स को पूरी तरह से दिखाने की कोशिश करता है। वैसे आपको बता दूं कि इस महीने में आते हैं कुछ खास त्योहार, जिनमें सावन के सोमवार के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूं। साथ ही साथ जो है यहां पर आता है हरियाली तीज का त्योहार, जब औरतें जो है वो अपने हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहनती हैं, सावन के गीत गाती हैं, व्रत रखती हैं, नाचती हैं, खूब इंजॉय करती हैं। और साथ ही साथ इस महीने में आता है रक्षाबंधन का त्यौहार, जो हम जानते हैं कि भाई बहन के पवित्र प्रेम और अटूट रिश्ते का पर्व है और ये सावन पूर्णिमा के दिन आता है। और साथ ही साथ इस महीने नाग पंचमी का त्यौहार भी मनाया जाता है, जहां पर प्रकृति और जीवों के प्रति सम्मान प्रकट किया जाता है। हरियाली तीज के बारे में कुछ और बातें आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल अब बात हुई है हरियाली की, हरी चूड़ियों की, तो फिर सावन और हरी चूड़ियों से जुड़ा हुआ कुछ तो होना चाहिए ना।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित।
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: ईकेवाईसी,
2: एनईएफटी, आरटीजीएस,
1: आईएमपीएस,
2: कॉस्मोस रुपे और वीजा डेबिट कार्ड,
1: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: चलिए ये तो रही सावन की और सावन के महीने की बात, सावन के त्योहारों की बात, लेकिन आज कुछ और भी मनाया जाता है उसके बारे में आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल वक्त एक बहुत छोटू से ब्रेक का।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
2: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
3: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
2: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
0: सो वेलकम बैक, 107.1 एफएम रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, मैं हूं ममता सहगल आपके साथ। साथ ही साथ आप हमें सुन रहे

हैं प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर बिल्कुल लाइव। तो भाई 3 अगस्त जो है वो बहुत सारी चीजों के लिए जो है जाना जाता है। और आपको ये बता दूं कि साल 2026 में ये जो अगस्त का पहला हफ्ता है इसे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो है विश्व स्तनपान दिवस के रूप में सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ और कई स्वास्थ्य मंत्रालयों और नागरिक समाज भागीदारों के सहयोग से ये जो विश्व स्तनपान सप्ताह है हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। और इस साल की जो थीम है वो है ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ स्ट्रेंथन व्हाट वर्क्स, जिसे हिंदी में कहेंगे जीवन की एक टिकाऊ शुरुआत के लिए स्तनपान जो कारगर है उसे मजबूत करे, ऐसा कहा जाता है। आपको बहुत ये इम्पॉर्टेंट जानकारी है, इनफैक्ट बहुत ज़रूरी है सबके लिए ये जानना और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना कि स्तनपान क्यों किसी शिशु के स्वास्थ्य और जीवन रक्षा के लिए ज़रूरी होता है। और इसी बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल ये जो है मनाया जाता है। और 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उन्हें विशेष रूप से जो है स्तनपान करवाया जाना चाहिए। इस पर डॉक्टर्स भी जो है स्ट्रेस करते हैं, 6 महीने से पहले उन्हें कुछ ऐसे सॉलिड फूड नहीं देना चाहिए क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो उसको डाइजेस्ट करने के लिए केपेबल नहीं होती और माँ के दूध से जो उन्हें ताकत शक्ति और इम्यूनिटी मिलती है वो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती। इसका जो साथ ही साथ आज एक और ख़ास दिन है और वो ये है कि हृदय प्रत्यारोपण दिवस जो है वो भी मनाया जाता है हर साल 3 अगस्त को। और ये जो है दिन 3 अगस्त 1994 को एम्स में डॉक्टर पी वेणुगोपाल द्वारा किए गए देश के पहले सफल हार्ट ट्रांसप्लांट की ऐतिहासिक उपलब्धि की याद दिलाता है। और अंगदान जागरूकता फैलाने के लिए ये जो दिन है बहुत बहुत अच्छे से जाना जाता है और इसमें जागरूकता अंगदान करने के लिए बढ़ाने पर लोग जो है वो जोर देते हैं। तो मैंने कहा ना कि ये जो अगस्त का महीना है बड़ा ही खास बन जाता है बहुत सारी चीज़ों की वजह से। फिलहाल तो आपके लिए कुछ गीतों के उस पार बातें बेशुमार। और आपको बता दें कि ठीक 11 बजे होंगे समाचार हिंदी में हमारे मुंबई केंद्र से समाचारों के उस पार ब्रेक फ्री के साथ हमारी एक और दोस्त रहेंगी आपके साथ। अब कौन है ये जानने के लिए बस थोड़ा सा इंतज़ार। Thank you.

और अब इसी के साथ चाहूंगी आपसे इजाजत इस वायदे के साथ कि मेरी और आपकी फिर गुरुवार के दिन होगी मुलाकात, और उस मुलाकात को खास बनाने के लिए पूरे दो दिन में अच्छे से मेहनत करने वाली हूं, ताकि आपके लिए लाऊं चुन चुन कर गीत, चुन चुन कर जानकारियां और बहुत सारी दिल की बातें। फिलहाल अपने दिल की बातें ब्रेक फ्री में करने आ रही हैं आपसे माया जी, तो माया का करिए इंतजार, माया की माया में खोकर अपनी इस जिंदगी को इस माया जाल से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी माया जाल में फंसना चाहते हैं तो वो सिर्फ एक ही होना चाहिए, एफएम रेनबो की मोहब्बत का माया जाल। फिलहाल मैं माया के हवाले स्टूडियोज करके यहां से जा रही हूं आपसे टाटा बाय बाय करते हुए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी एक गीत है इसे गुनगुनाते रहिए। 11 बजे समाचारों का भी इंतजार कर लीजिए, क्योंकि समाचारों के उस पार ही ब्रेक फ्री में आपकी और माया की होगी खूबसूरत सी मुलाकात।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 107.1 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर सुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने मोबाइल पर न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर यह कार्यक्रम इस वक्त सुन सकते हैं। सुबह के 11 बज रहे हैं। प्रस्तुत है इस वक्त की कुछ खास खबरें। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों NSO

के प्रमुखों की दो दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। ब्रिक्स देशों में, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का समावेश है, इनके प्रतिनिधियों के साथ ये बैठक में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होनी है। राज्यों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और विकास कार्यों में तेजी लाने के मकसद से केंद्र सरकार ने कल सभी राज्यों को टैक्स के हिस्सों के तौर पर 1,09,000 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त अग्रिम किश्त जारी की है। राज्यवार आवंटन के तहत महाराष्ट्र को कुल 60,022 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त राशि मिली है। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक कर हस्तांतरण के अतिरिक्त वितरित की जाएगी। महाराष्ट्र को मिले इस अतिरिक्त फंड से राज्य भर में विभिन्न विकास परियोजनाओं को और बुनियादी ढांचों के कार्यों को अन्यथा और भी गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद जताई जा रही है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की है कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया है। इस हमले की योजना पहले से ही बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि होमुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर यह भी कहा है कि ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भी समझौता किया जा सकता है। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपोई ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। यह तन्वी का पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब होगा। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी गुएन थुई लिन को हरा दिया है। 17 साल की तन्वी ताइवान की ताइजू यिंग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र की ताइपेई ओपन चैंपियन बनी है। वे 2008 में साइना नेहवाल के बाद ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला रहेगी। तो ये थी इस वक्त की कुछ खास खबरें।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर सुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने मोबाइल पर न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर यह कार्यक्रम इस वक्त सुन सकते हैं। और यदि आपने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो देर किस बात की, तुरंत इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे कार्यक्रमों का आनंद उठाइए। सुबह के 11:05 हो रहे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रेक फ्री। सभी श्रोताओं को माया का प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों सुबह का वक्त है, सबको अपने अपने गंतव्य पर पहुंचने की बहुत जल्दी है। जब आज आ रही थी ना आपसे मिलने, तभी जो सोमवार की सुबह की जो भागदौड़ देखी, तो ऐसे लगा कि हम कितना भाग रहे हैं ज़िंदगी में। ज़िंदगी चेंज हो रही है, वक्त के साथ साथ चेंज होना ही पड़ता है, और ये बात उतनी ही सही है जितना हम सांस लेते हैं। अगर आप चेंज नहीं होते, अपने आप में बदल

आप नहीं लाते तो ऐसी बहुत सारी बातें होती है जिसकी वजह से आप पिछड़ जाते हैं। लेकिन जब बदलाव बाहरी तौर पर होता है तो क्या अंदरूनी रूप में आप उतने संयत होते हैं? संयत होने का मतलब ये होता है कि बाहर जितने भी चाहे बदलाव क्यों ना हो, कितनी ही परिस्थितियां बदल जाए, जिंदगी के तौर तरीके, रहन सहन, खान पान बदल जाए, अपने अंदर के आप जो होते हैं ना, जिसे हम स्वयं कहते हैं, अभिमान का, अहंकार का एक बहुत सुंदर रूप जो बिल्कुल ओरिजिनल होता है, बिल्कुल खालिस होता है, वो बदलना नहीं चाहिए ऐसा कहते हैं। क्योंकि ये अगर बदल जाता है तो बाहरी जो बदलाव होते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, ऐसे मिलावटें आ जाती हैं जिसकी वजह से आप इन दोनों में कोप अप नहीं कर पाते। इसलिए अपने अंदर के जो स्वयं को हमेशा से ही ओरिजिनल बरकरार रखना चाहे बाहर कितने भी बदलाव क्यों ना आए।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना। कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। एनरिचिंग लाइफ।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: सुबह के 11:24 हो रहे हैं। ब्रेक फ्री कार्यक्रम आप माया के साथ सुन रहे हैं। ब्रेक फ्री हमारे इस कार्यक्रम में अक्सर हम बातें ये करते हैं कि जब कोई मर्यादाओं को लांघ कर, सीमाओं को लांघ कर जाकर उस आसमान को, सातवें आसमान को छूने की कोशिश करता है, तो वो क्या उमंगें होती हैं, वो क्या हौसला होता है, वो क्या जज्बा होता है। हालांकि ये जो सारी बातें हैं हम सब में कूट कूट कर भरी होती है। कोई देर सवेर पहचान जाता है, कोई बहुत जल्दी पहचान जाता है अपने आप के इस काबिलियत को। इस काबिलियत को बाहर लाने के लिए या फिर इसे और पुरजोर तरीके से यूज़ करने के लिए, वैसे तो बहुत सारे बहाने हमें ज़िंदगी दे देती है, बहुत सारे ऐसे मौके हमें मिल जाते हैं, पर क्या हम उस हर मौके का सही से इस्तेमाल करते हैं? नहीं, बहुत सारे लोग तो बस अपने ही वलय में खुश रहते हैं। मैं, मेरे अपने, मेरा जॉब, मेरा बिजनेस, बस। लेकिन अगर उसके बाहर जाकर आपको कुछ करना है या फिर कर दिखाने का माता अंदर ही अंदर, वो कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसे कीड़े मचलने लगते हैं अंदर ही अंदर, लेकिन हम उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वही हमारा अपना जो एक सेफ जोन होता है, उसे बाहर निकलने की किसी को पड़ी नहीं रहती। हाँ, लेकिन जो ये कर दिखाने की कोशिश करते हैं और फिर उसमें कामयाब हो जाते हैं, तो ऐसे लोग हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं और फिर कभी कभी ऐसे लगता है कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। हमारे वहले से, हमारे एक सेफ जोन से बाहर जाकर हम भी कुछ कर सकते हैं।

जब रस्में अपनी जो मर्यादाएं हैं, जो कुछ हमें वडीलों से हमारे मिला है, उन्हें जब पार करके लांघ कर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, नया आसमान ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो अमूमन होता ये है कि हमें विरोध ही सहने को मिलता है। हाँ, ये तो लाजमी है। हाँ, आप ये अलग करने जा रहे हो तो अगर ऐसा आप करते हो तो हो सकता है कि इसमें आपको अपयशी हाथ लगे, लेकिन ये जो हमारे पुरातन ख्यालात हैं वो वक्त के साथ साथ बदलने चाहिए। हाँ, बदलाव, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे कहा था, तो ये जो बदलाव है ये नई पीढ़ी में अब नज़र आने लगा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। दहेज, जो कि एक बहुत पुरानी प्रथा है, जो दुल्हन को दूल्हे को देना पड़ता है, दुल्हन के घर वाले देते हैं, और बिल्कुल ऐसा हम देखते हैं कि पूरी ज़िंदगी माँ बाप अपना इतना कुछ सहकर, अपने आप को निचोड़ कर बच्ची के लिए जो कुछ जमा करते हैं वो सब उनके हवाले करते हैं, लेकिन फिर भी वो जो दूल्हे वाले होते हैं वो और उनकी मांगें बढ़ती ही जाती हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि दुल्हन को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ब्रेक फ्री ये जो समय है वो अब धीरे धीरे दिखने लगा है। अगर ऐसी भनक लगती है दुल्हनों को, ऐसी बहुत सारी घटनाएं इन दिनों यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, साउथ में देखी गई है कि यदि बहुत ज़्यादा दहेज मांगने की अगर सामने वाला कोशिश कर रहा है तो दुल्हन ने साफ मना कर दिया है शादी के लिए और बारातें लौटा दी गई हैं। कितनी बड़ी ये जो बात है, ये समय के साथ साथ चलने वाली जो बात है, मर्यादाओं के उल्लंघन की बात है। कभी कभी कहा यह जाता है कि ऐसे लोग बड़े मुँहफट होते हैं, उनमें गुरूर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन दोस्तों ये जो मर्यादाओं को लांघने वाली बात है ये अपने आप में बड़ी खूबसूरत है और इसका आज के समय में बहुत ही ज़्यादा स्वागत होना चाहिए। आपको क्या लगता है?

0: कॉस्मॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

मर्यादाओं की, सीमाओं की जब बात चलती है तो खासकर स्त्री के लिए, नारी के लिए ये बहुत ज़्यादा होती है। और वक्त के साथ साथ जब बदलाव आ रहे हैं तो स्त्रियों में, नारियों में ये बदलाव बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। समाज ने जो कुछ भी बंधन उन पर

डाले हैं वो सब तोड़कर महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं, और ऐसी बहुत सारी फ्रंट्स हैं, करियर्स हैं जिसमें महिलाएं आगे हैं। नेवी है और हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उसमें भी हम महिलाओं को आगे देखते हैं। इन दिनों मुझे कॉलेज के कुछ डिबेट्स में शरीक होने का मौका मिला, तो लड़कियों का वो जो एक बागी रूप देखने को मिला। लड़कियां कहती हैं आजकल के क्या ज़रूरत है शादियों के बंधन में बंधकर मायके से ससुराल जाना और फिर माँ बाप को भूल जाना। वो माँ बाप जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, क्या हम लड़कों जैसी जिम्मेदारियां संभालकर हमारे माँ बाप को नहीं संभाल सकते? शादियों की वजह से आजकल क्या कुछ हासिल हो रहा है हम तो देख ही रहे हैं। तो क्या शादी करना ज़रूरी है? क्या हम माँ बाप को ऐसे ही संभाल नहीं सकते? क्या हम वो जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सकते? बहुत अच्छा लगा ये सारी बातें सुनकर, और ऐसे लगा कि हाँ सचमुच बदलाव हो रहा है, और ये बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है।

0: की लड़कियां। आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: ब्रेक फ्री कार्यक्रम अब बस यहीं तक ही. अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे मुख्य समाचार और उसके पश्चात आप सुनेंगे कार्यक्रम म्यूजिक कैफे. आप सुनते रहे FM रेनबो 107.1.

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स
1: 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडिया वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर पर सुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं न्यूज ऑन एयर ऐप पर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, प्रस्तुत है इस वक्त की कुछ खास खबरें। नीट मामले पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद आज लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक और राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में मोदी जी ने भारतीय दल के प्रदर्शन पर गर्व व्यक्त किया और भारत द्वारा 13 स्वर्ण पदकों सहित 39 पदक जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने सभी पदक विजेताओं को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए बधाई दी है। ऑल इंडिया कोटा के

तहत MBBS और दूसरे अंडर ग्रेजुएट चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए काउंसलिंग का पहला दौर कल से शुरू होगा और 2026-27 बैच का शैक्षणिक सत्र 28 सितंबर से शुरू हो जाएगा। चिकित्सा काउंसलिंग कमेटी MCC के जारी कार्यक्रम के मुताबिक DM'd और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए काउंसलिंग का पहला दौर 4 अगस्त से 17 अगस्त तक होगा। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पवार ने फैसला सुनाया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। तो ये थी इस वक्त की कुछ खास खबरें।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर सुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने मोबाइल पर न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह कार्यक्रम इस वक्त सुन सकते हैं। और यदि आपने ये ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे ये कार्यक्रम उस ऐप पर ज़रूर सुनिएगा। दोपहर के 12:04 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम म्यूज़िक कैफ़े। सभी श्रोताओं को एक बार फिर से माया का प्यार भरा नमस्कार।

आप हमारे चैनल पर हमेशा बहुत ही खूबसूरत से गीत सुनते हैं और बहुत सारी फरमाइशें हम तक पहुंचती हैं कि और बहुत सारे खूबसूरत गीत जो आपको पसंद होते हैं वो आप सुनना चाहते हैं। म्यूज़िक का ये जो जादू है, सुर का, संगीत का ये जादू है, ये हमारे इस प्लेटफॉर्म से आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। लेकिन वैसे भी अगर हमारे जीवन में संगीत का अगर हम स्थान ढूंढने जाए तो बहुत ज़्यादा है भाई। संगीत को हम एक औषधि के रूप में तो पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। संगीत की वजह से हमारा जो मूड होता है वो फ्रेश होता है। और पता है, संगीत की जो वाइब्रेशंस होती हैं, संगीत की जो तरंगे होती हैं, ये जो हमारे मन मस्तिष्क तर और उसके बाद हमारे दिल तक जब पहुंचती हैं, तो ऐसे बहुत सारे सुंदर सुंदर रसायन हमारे शरीर, हमारी जो छोटी छोटी सेल्स होती हैं मस्तिष्क की, दिल की, ये ऐसे रसायन प्रोड्यूस करती हैं जिसकी वजह से हम खुश रहते हैं। भाई ये तो हुई बहुत ज़्यादा, हम ये कह सकते हैं कि साइंटिफिक बातें, लेकिन यदि शायराना अंदाज में कहा जाए तो ये जो संगीत है हमारे पूरी ज़िंदगी को और भी बहुत सुंदर और शायराना बना देता है और साथ ही साथ हमें जीने का नया हौसला भी देता है ये संगीत।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

जो संगीत की साधना करते हैं उनके लिए तो पग पग पर और पल पल में संगीत सुनाई देता है, दिखाई देता है। एक बार उस्ताद पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी को किसी ने पूछा कि आप इतना सुंदर कैसे बजा लेते हैं बांसुरी को। और एक बार शहनाई वादक को भी बताया गया था कि उनके जो साथ जो शहनाई वादक थे उनको भी पूछा गया था कि आपको ऐसा कैसे लगता है कि इनकी बांसुरी इतनी सुंदर बोलती है। तो वो जो उनके साथ बजाने वाले थे वो कहते हैं कि हमने हमेशा उन्हें खासकर जो बहुत सुंदर वादियाँ होती हैं वहाँ पर अपने आप को रमते देखा है और ये कहते देखा है कि हमेशा मुझे इन वादियों में संगीत सुनाई देता है, मुझे मेरी सांसों में संगीत सुनाई देता है। और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने भी ये बात कही कि मुझे ये संगीत महसूस होता है, दिखाई देता है। तो जनाब ये बात तो तय है कि आपके देखने पर आपका जो दृष्टिकोण है वो अगर खूबसूरत हो तो ये संगीत आपको हर सू सुनाई देगा। और फिर ये संगीत जब आपकी जीवन की लय

कर लेगा तो आपका जो स्वभाव है, आपके जो विचार हैं, आपका जो आचार है, ये सब कुछ सुरीला और सुरमय हो जाएगा। अब हम ये कहेंगे कि हमें ज़िंदगी में इतना संगीतमय बनने का वक्त ही कहाँ मिलता है। भाई ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना कला में प्रविष्ट होना, आविष्ट होना चाहिए। संगीत आपको खुद ब खुद वैसे बना देगा, बस आपको उस तरफ अपना एक कदम बढ़ाना है। हमारी रोज़मर्रा की आपाधापियाँ हैं, बहुत सारे टेंशन्स हैं, इसमें हम अपने आप को इतना आविष्ट कर लेते हैं कि इन सारी बातों पर ध्यान ही नहीं दे पाते। कहते हैं संगीत में ये सारी ताकत है कि आपके स्वभाव को सुरमई और जिंदगी को संगीतमय बना दे। कोशिश करने की ज़रूरत है बस।

नितिन मुकेश और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में गाए हुए इस गीत के साथ ही दोस्तों न्यूज़ म्यूज़िक कैफ़े बस यहीं तक ही, क्योंकि ठीक 12:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। हम आपको याद दिला दें कि 1:05 का वक्त होता है हिट एंड हॉट कार्यक्रम का, और इस कार्यक्रम में आप अपने पसंदीदा गीत ज़रूर सुनेंगे। तो आप इंतज़ार कीजिए और सुनते रहें FM रेनबो। अब वक्त हो रहा है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग का।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है।
2: वो लिखते हैं, रेडियो उद्घोषक और श्रोता का रिश्ता आवाज से शुरू होकर विश्वास, आत्मीयता और दिलों के जुड़ाव तक पहुंचता है। इसी आत्मीयता को हम उमंग कार्यक्रम में देख सकते हैं। यही जुड़ाव बना रहे।
1: जी हाँ श्रोताओं, यही जुड़ाव बना रहे, हमारी भी यही इच्छा है। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी सुनवाई जाती है। इसी कड़ी में श्रोता संवाद में सर अजीत जी और प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी से मनोदर्पण विषय पर बातचीत सुनी और पसंद आई।
1: आगे आपने लिखा है, कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी सराहनीय लगी। इस जानकारी को सुनकर विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावक निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। श्रोता संवाद में मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण जानकारी सुनवाने के लिए हम प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी एवं सर अजीत जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
2: एक निवेदन भी करते हैं कि ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित करें। किसी कारणवश ये कार्यक्रम श्रोता सुनने से वंचित रह गए हों तो वो भी इस कार्यक्रम को सुन सकें और कार्यक्रम सुनकर लाभ भी उठा सकें। एक बार पुनः आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और आदित्य जंघेल के साथ साथ अंजलि जंघेल जी का। आप लिखते हैं कि रेडियो की पहचान उसकी आवाज नहीं बल्कि श्रोताओं के दिलों से उनका जुड़ाव है। और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव लिखते हैं,
1: नियत स्टेशन से अगर हम उमंग कार्यक्रम नहीं भी सुन पाते हैं तो किसी न किसी स्टेशन से जरूर सुन लेते हैं
2: जी,
1: क्योंकि ये आसपास के किसी न किसी स्टेशन से अलग अलग समयों में प्रसारित होता रहता है।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
1: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान क्या है?
2: इसका उत्तर है साथियों, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार।
1: अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था,

0: गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। श्री महादेव देसाई महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे। वे महान देशभक्त और गांधी जी के अनुयायी थे।
0: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि बिजली बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे?
1: इसका उत्तर है लगभग 10,000 बार।
0: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है?
1: अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या IAS के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा।
0: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था अपनी किस पुस्तक में APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है?
1: साथियों, पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार उनके शिक्षक ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
0: तो श्रोताओं, ये थे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा किसने दिया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करके सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक भी डाउनलोड कर सकते हैं।
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर जैसा कि आप जानते हैं, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। श्रोताओ, संदेश जरूर भेजिएगा।
1: जी, आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताजा जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है मेरी माँ।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है। ये पाठ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की जेल डायरी का एक अंश है, जिसमें उन्होंने अपने चरित्र निर्माण में अपनी माताजी की भूमिका को सराहा है।
0: मेरी माँ, मेरी मा।

0: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
1: राम प्रसाद बिस्मिल के मुख से निकली इन पंक्तियों से भला कौन परिचित नहीं होगा। ये वो गीत है जिसे लगभग पूरा भारत गाता था।
2: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
1: इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों की रग रग में क्रांति की ज्वाला भर दी थी। इस गीत को गाते गाते न जाने कितने स्वाधीनता सेनानी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए।

उनका नाम था राम प्रसाद, लेकिन बिस्मिल के उपनाम से वो बहुत प्रसिद्ध हुए। इसी उपनाम से उन्होंने बहुत सी देशभक्ति की कविताएं और गजलें लिखी।

0: बिस्मिल का अर्थ होता है बेचैन या घायल। रामप्रसाद बिस्मिल एक लेखक, कवि और क्रांतिकारी थे जिनका जीवन हमेशा देश के असंख्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
1: वो कहते थे,
2: मेरा रिश्ता क्रांति और कलम दोनों से है।
0: बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक गांव में मुरलीधर और मूलमती के यहां हुआ था। वो बचपन से ही बहुत नटखट प्रवृत्ति के थे। उनका मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज्यादा लगता था। उन्हें तैराकी, कुश्ती जैसे खेल बहुत पसंद थे।
1: अपने बचपन और शिक्षा के बारे में बताते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरे निज दिनों की छटा में लिखा है।
2: जब मैं कोई 7 वर्ष का हुआ तो पिताजी ने स्वयं ही मुझे हिंदी अक्षरों का बोध कराया और फिर एक मौलवी साहब के मकतब में उर्दू पढ़ने के लिए मुझे भेज दिया गया। वहां से मैंने 4th जमात पास की।
0: समय का पहिया चलता गया। उनके पिताजी पर स्वाधीनता संग्राम का बहुत प्रभाव था और शायद इसलिए वो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे, लेकिन उनकी माता के हस्तक्षेप के कारण उन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए मिशन स्कूल भेज दिया गया।
1: बिस्मिल के जीवन में यदि हम गहराई से झांकें, तो पता चलता है कि वो अपनी माता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने जीवन में अपनी माता की भूमिका को बहुत अहम माना है। वो मानते हैं कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी माता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो लिखते हैं,
2: 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वे नितांत अशिक्षित ग्रामीण कन्या के समान थी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष के बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उनमें खुद ही पैदा हुआ। मोहल्ले की सखी सहेली जो भी घर पर आया करती थी, उनमें जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों के बाद वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी।
0: साथियों, उन दिनों समाज द्वारा स्त्री शिक्षा पर बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता था। इसके बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिस्मिल की माताजी आज भी सब महिलाओं और कन्याओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और आदर्श हैं।
2: मां तो मां होती है बस। ऐसे मेरी माता मेरे धर्म कार्यों और शिक्षादी में बड़ी सहायता करती थी। वे प्रातः 4 बजे ही मुझे जगा दिया करती थी। मैं नित्य प्रति नियम पूर्वक हवन किया करता था और यहीं से मेरी रुचि अध्यात्म और सत्य निष्ठा के प्रति बढ़ी। सच कहता हूं, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो शायद मैं भी साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता और सत्य के प्रति मेरा इतना अधिक अनुराग न होता।
1: अपनी सत्यनिष्ठा के बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है।
2: एक बार पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो मुझसे करा ले। आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया, ये तो धर्म के विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मामला खारिज हो जाएगा, लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव ना हुआ और ना ही मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में मैं हमेशा सत्य का आचरण करता था और चाहे कुछ हो जाए मैं सत्य बात कह देता था।

0: तो ऐसी थी सत्यवादिता राम प्रसाद बिस्मिल की, और इस शिक्षा की नींव डाली थी उनकी माता जी ने।
1: पराधीन भारत में अपनी पीढ़ी के कई युवाओं की तरह राम प्रसाद बिस्मिल भी अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से परेशान थे। माता की शिक्षा, श्रेष्ठ गुरुजनों की प्रेरणा और अनेकानेक देश प्रेम और अध्यात्म से ओतप्रोत साहित्य के अध्ययन ने उनके मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर दी थी।
0: उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपना जीवन देश की आजादी की लड़ाई में समर्पित करने का फैसला कर लिया। 8वीं कक्षा तक अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल बहुत कम उम्र में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए थे।
1: नौ अगस्त 1925 को हुए काकोरी रेल कांड में वो अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। जेल में ही उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से छिपकर उसके अंशों को जेल से बाहर भेजते रहे।
0: उनकी आत्मकथा का शीर्षक था मेरे निज जीवन की छटा। आत्मकथा को उनके मित्रों ने प्रकाशित करवा दिया।
1: गोरखपुर जेल में लिखी गई आत्मकथा में उन्होंने अपनी माता को बड़े ही मार्मिक शब्दों में संबोधित किया है।
2: जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला, इस जन्म में तो क्या, मैं अनेक जन्मों में भी प्रयत्न करूं तो तुमसे ऋण नहीं हो सकता। मां, तुम्हारी ही दया से तो मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी मां, पर मुझे विश्वास है तुम ये सब समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया और तुम्हारी कोख कलंकित ना की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा तुम्हारा बेटा। मां, जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो उसके किसी पन्ने पर तुम्हारा नाम

काकोरी रेल कांड में उन पर मुकदमा चला और उनके साथ तीन और क्रांतिकारी साथियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरी माँ, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम राग शंकरा।
1: इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध राग शंकरा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके स्वर विस्तार, आरोह अवरोह, गायन समय और स्वर मालिका के बारे में भी बताया गया है।

राग शंकरा। राग शंकरा की उत्पत्ति बिलावल थाट से हुई है। इसके आरोह में ऋषभ और मध्यम अर्थात रे और म तथा अवरोह में केवल मध्यम यानी म वर्जित स्वर है। परंतु राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए ऋषभ अर्थात रे का प्रयोग कर्ण स्वर के रूप में किया जाता है। आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वर प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व शाड़व है। इसका वादी स्वर गंधार यानी ग है और संवादी स्वर निषाद अर्थात नी है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग शंकरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए

अब प्रस्तुत है राग शंकरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग शंकरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अब प्रस्तुत है इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं हम आशा का दीप जलाएं। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम राग शंकरा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: सौम्या मलिक,
1: जगबंधु और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे मराठी बातमियां और तत्पश्चात होगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम हम तुम। सुनते रहें FM रेनबो।

0: Swali FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर सुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने मोबाइल पर न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर यह कार्यक्रम इस वक्त सुन सकते हैं। दोपहर के 1:06 हो रहे हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम हम तुम, आपका पसंदीदा कार्यक्रम हम तुम, जिसमें आप अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है और एक बार फिर से माया आप सभी को सादर प्रणाम करती है। अगर आपको इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है, आपको आपके पसंदीदा गीत सुनने हैं, तो करना क्या है? जी हाँ, अगर आपको इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है तो आपको बस एक व्हाट्सएप मैसेज करना है। आपको इस व्हाट्सएप मैसेज में अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, आपका नाम, आप कहाँ से हैं, सारी जानकारी हमें लिखकर भेजनी है 8657661071 इस व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर एक बार फिर से दोहराए देते हैं 8657661071। तो जल्दी से आप अपना फ़ोन उठाएं, अपना गीत निर्धारित करें और हमें जल्दी से मैसेज करिए, हम आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करेंगे। दीपा पालकर जी की पहली फरमाइश हम तक पहुंची है, दिल चाहता है फिल्म से ये टाइटल सॉन्ग।

प्रियतमा फिल्म से बहुत ही खूबसूरत सा गीत किशोरदा की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। श्रीधरन बालचंद्रन जी ने इसकी फरमाइश हमें भेजी थी। अगली फरमाइश मालेगांव से हम तक पहुंची है। अमित भगत जी सुनना चाहते हैं जान फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया हुआ ये गीत।

अगली फरमाइश हम तक जो पहुंची है मानखुद से प्रकाश शिंदे जी ने भेजी है, वो सुनना चाहते हैं प्यार इश्क और मोहब्बत फिल्म का टाइटल सॉन्ग। और उन्होंने साथ ही साथ ही जानकारी भी भेजी है कि ये जो फिल्म है आज ही के दिन 2001 में रिलीज हुई थी, तो आज इस फिल्म को बराबर 26 साल पूरे हो गए हैं। इस जानकारी के लिए प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रही आपकी फरमाइश।

अगली फरमाइश हम तक पहुंची है इंदौर से। मंजिल फिल्म का किशोर दा का गाया हुआ बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुनना चाहते हैं अजय साखरे जी। वैसे ये गीत जो है इतना खूबसूरत है कि बारिश का मौसम हो, रुमानियत भरा माहौल हो और ये गीत ना हो तो मज़ा नहीं आता।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: 1:40 हो रहे हैं दोपहर के। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम तुम और मैं हूँ आरजे माया आपके साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये आपकी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम है, आपका पसंदीदा कार्यक्रम है। हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही व्हाट्सएप नंबर अनाउंस कर दिया था और ढेर सारी फरमाइशें हम तक पहुंची है, इसलिए हमने कार्यक्रम के दौरान फिर से नंबर अनाउंस नहीं किया क्योंकि पर्याप्त मात्रा में हम तक फरमाइशें पहुँच चुकी हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं। अगली जो फरमाइश हम तक पहुँची है वो पुणे से हैं। राकेश ठुर जी सुनना चाहते हैं बेमिसाल फिल्म का किशोरदा और सुरेश वाडकर का गाया हुआ ये गीत।

दोस्तों, हम तक बहुत सारी फरमाइशें पहुंच रही हैं और हमें खेद है कि बस केवल एक घंटे के प्रोग्राम में इतनी सारी फरमाइशें हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें खेद है। लेकिन अगले कार्यक्रम में हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपकी जो फरमाइशें हैं वो पूरी की जाए। 1:47 हो रहे हैं, कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर है और बस कुछ एक या दो या तीन फरमाइशें हम पूरी कर पाएंगे। फिलहाल तो मैं आपको सुना रही हूँ अकोला से विजेंद्र घाटोल जी ने भेजी हुई फरमाइश। उन्हें हम दिल दे चुके सनम फिल्म से उदित नारायण का गाया हुआ ये गीत सुनना है।

गीत के बाद आखिरी फरमाइश होगी प्रमोद चिंचोलकर जी की अकुला से ही, वो मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म से टाइटल सॉन्ग लता मंगेशकर जी का गाया हुआ सुनना चाहते हैं, तो इसके बाद ये फरमाइश आप सुन पाएंगे।

वो अब हम पूरी करते हैं। प्रमोद चिंचोलकर जी ने अकोला से ही ये फरमाइश भेजी है, मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म का ये जो टाइटल सॉन्ग है लता दीदी का गाया हुआ, ये आप सुनना चाहते हैं।

लता दीदी के गाए हुए इस गीत के साथ ही हमारा आज का हम तुम कार्यक्रम बस यही तक ही, लेकिन जाते जाते हमारे सारे श्रोताओं का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इतने सारे हमारे पास रिक्वेस्ट पहुंची है, हमें खेद है हम सारी रिक्वेस्ट नहीं पूरी कर पाए। हमारी अगली कोशिश यही रहेगी कि जिनकी फरमाइशें हम पूरी नहीं कर पाए उनकी फरमाइशें हम ज़रूर पूरी करेंगे। चलिए अब माया अब से इजाज़त लीजिए लेती हैं और जाते जाते यही है कहना आपसे कि बस खुश रहिए, हमारा FM रेनबो सुनते रहिए, बहुत खूबसूरत गीत सुनते रहिए और स्वस्थ रहें मस्त रहें। ठीक 2 बजे आप सुनेंगे दिल्ली के इनसे प्रसारित मिड डे न्यूज़ और उसके पश्चात होगा चला दोस्त हो बोलू का ही ये मराठी कार्यक्रम। सुनते रहें FM रेनबो।

0: impressive performance at the Glasgow Commonwealth Games by bringing 39 medals. President Murmu expressed confidence that the sportspersons of the country will bring greater glory to the nation in the future international events. We have news just in. The Lok Sabha has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament proceedings disrupted following opposition protest over several issues. Counting of votes for by-elections in three assembly constituencies of Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh underway. Delhi court acquits former WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh in sexual harassment case filed by some women wrestlers. India achieves over 5 lakh Aadhaar verified organ donation pledges, stands third globally in number of organ transplants. US and Iran expected to hold next round of peace talks today. And Weather Department forecasts heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Bihar, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for today. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमेरिका और ईरान के बीच आज अगले दौर की बातचीत संभावित। और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा की तीन सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखाभाई रबारी और मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। बिहार से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: पिछले 30 सालों से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शुरुआती बढ़त बना ली है। प्रशांत किशोर मतगणना की शुरुआत के साथ ही प्रत्येक राउंड की गिनती में लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के नीरज कुमार हैं, जिन्हें अब तक 15,000 से ज्यादा मत मिले हैं। वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी 4,000 से अधिक मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई, जिनमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्यवाही आज पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे फिर से आरंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद चनेटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
3: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं इट इज अगेंस्ट।

0: norms of the parliament. You cannot do this. अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा?
1: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में संपर्क

0: समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक के द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान फुटपाथ सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। पीठ ने कहा कि लक्ष्य बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्ष के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5,00,000 से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मानने की अपील की है।
2: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
1: इस अवसर पर सुश्री अनुप्रिया पटेल ने एक साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारम्भ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र के निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
3: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
1: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव भी उपस्थित थे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक

0: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक में आज शाम 20 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: काफी निरीक्षा के बाद आज कर्नाटका में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के करीबी माने वाले विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है और कुछ सदस्य जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते थे उनको बदला गया है। सिद्धरामैया और शिवकुमार के मंत्रिमंडल में 13 बदलाव देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा जीएस पाटिल को असेंबली स्पीकर और सलीम अहमद को काउंसिल के चेयरपर्सन के स्थान के लिए चुना गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कल तेज बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्र कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारेकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है और जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है उन्हें 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा की घोषणा की गई है। हालांकि भद्रक और जाजपुर जिलों के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि धान और सब्जियों की फसलें बह गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमिलनाडु में आज आषाढ़ माह का 18वां दिन है। इसे आषाढ़ पेरुक्कू कहा जाता है और ये देवी अम्मन को समर्पित है। इस त्यौहार में कृषि का आधार रही नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत 3rd स्थान

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ऍप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया. देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0. मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है. मतलब सोलर पैनल की. मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा.
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर.

के सभी मुसाफिरों को मेरा आदित्य धाईगुड़े का बहुत बहुत स्वागत। शाम के ठीक 5:06 हो चुके हैं और आपके सफर को सुहाना बनाने आया है 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे आदित्य धाईगुड़े। सोमवार की शाम है, ऑफिस का काम रैप अप हो रहा है और रश आवर शुरू हो चुका है। क्यों तो सुनते हैं एक भागता दौड़ता गाना।

0: Sunny FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: Welcome back, dosto. Show chal raha hai, Love You Zindagi. Pichle do gaane bahut hi उम्दा यानी बहुत ही उत्साह भरे थे और कुछ लव्ज उन गीतकारों ने लिखे थे जो मेरे नहीं थे ठगले वगैरह ऐसा मैं किसी को कभी भी नहीं कहूँगा, लेकिन गानों में जो

उछल थी वो जरूर आपके मूड को अप करनी थी, इसीलिए मैंने ऐसे कुछ गाने बजाए। तो पूरा दिन चाहे जैसा भी बीता हो, अब इसे घंटे भर के लिए, इस घंटे भर के लिए सब भूल जाइए, क्योंकि ये वक्त है खुद को याद दिलाने का कि जिंदगी फर्स्ट, बाकी सब आते हैं बाद में। तो सुनते रहिए FM रेनबो 107.1, हम है म्यूजिकली योर्स।

ढोल ताशे सब कुछ बज रहा है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप आनंद कृष्णन जी, संजय दर्शन जी, प्रणव शिंदे जी है, अजय साखरे जी है, सुनील गायकवाड़, विजेंद्र घाटोल जी, अशोक पाटिल जी है, श्रेय राउत, मिलेश गजानंद राउत और मिलेश राउत। तो इस गीत के बारे में, जो गीत अभी हमने सुना उसके बारे में जब हम सोचते हैं, है? उसमें गाने में जो प्रियंका की नाजुक अदाएं हैं उन्हें देखकर दिल की खिड़की खुल गई हो और किसी ने उस दिल में एंट्री मार दी हो, तो अभी सुनते हैं मौजा ही मौजा।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स.
2: फिर एक बार स्वागत है आप सभी का FM रेनबो के लव यू जिंदगी इस कार्यक्रम में. समय हो रहा है 5:31. मैं हूं आपका आरजे दोस्त और होस्ट आरजे आदित्य धाईगुड़े, और हम बात कर रहे थे मंडे की. दोस्तों, अक्सर हम मंडे को बहुत ही भारी मान लेते हैं, लेकिन जरा सोचिए मंडे की ये शाम कितनी सुकून देने वाली होती है. शौक हो गए? नहीं, बताओ क्यों? क्योंकि आप पूरे हफ्ते का सबसे मुश्किल दिन पार कर चुके होते हैं मंडे को. मुबारक हो. चलो सेलिब्रेट करें इस गाने के साथ.

चाय की टपरी पर दोस्तों के साथ वो एक कप कड़क चाय या गाड़ी की खिड़की से ठंडी हवा का झोंका, यही तो वो छोटी छोटी खुशियां हैं जो कहती है बॉस मुस्कुराओ। अगर आप इस वक्त ट्रैफिक सिग्नल पर हैं, गाड़ी बस या रिक्शा में या किसी भी जरिए से आप अभी सफर कर रहे हो, गहरी सांस लीजिए। नहीं नहीं, मैं कोई योगा नहीं करवाऊंगा, जिंदगी कोई रेस नहीं है, बस इतना ही कहना चाहूंगा। जिसे आज ही जीतना है ऐसा भी नहीं है ना, लेकिन जीना जरूर है। यह तो एक सफर है जिसके हर स्टेशन का अपना एक मजा होता है। किशोर दा ने सालों पहले इस सफर की हकीकत को बड़ी खूबसूरत अंदाज में गाया था। चलिए वही पुराना एहसास ताजा करते हैं, क्यों।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक दोस्तों, कार्यक्रम शुरू है लव यू जिंदगी। 5:48 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 6 बजने के बॉर्डर पे हैं हम। तो किशोरदा की आवाज हमने सुनी दोनों गानों में, आवाज का कोई मुकाबला ही नहीं उनका। दोस्तों कहीं जाइएगा मत इस कार्यक्रम के बाद, बिकॉज आज जो है अभी कुछ देर में मराठी में समाचार शुरू होंगे, और फिर नागपुर केंद्र से, और फिर छत्रपति संभाजी नगर केंद्र से, उसके बाद ठीक शाम 6:10 पर शुरू होगा एफएम रेनबो का एक बेहद खास रूहानी और नफीस शो अंदाजे बया, जहां महफिल सजेगी सूफी संगीत, अमर लेखकों की कहानियों की, हसीन शायरियों की, शायरों की और कविताओं की। और हाँ, आज के शो में हम याद करेंगे बॉलीवुड के उस अजीम शायर को जिनका जन्म 3 अगस्त को हुआ था। तो सुनते रहिए 107.1 म्यूजिकली योर्स एफएम रेनबो।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। FM रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। तो इस गाने से पहले मैंने एक क्लू दिया था कि हम आज के जो अगला जो कार्यक्रम होगा अंदाजे बयां का, उसमें पेश करेंगे कुछ ऐसे शायर के कुछ नगमे, उनके कुछ कविताएं, कुछ शायरियां। तो उनका नाम जो है मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं बस बताना चाहूंगा कि संजय दर्शन जी जो हैं उन्होंने वो बहुत ही सही नाम गैस किया हुआ है। और साथ साथ में मैं उनका नाम के साथ में हमारे साथ जो बाकी श्रोता जो जुड़े हैं, पंकज मोहड़ जी हैं, संतोष दिनकर पाटिल जी हैं, चेतन कुमार जी हैं, प्रदीप अनंत कृष्णन, प्रणव शिंदे जी। हाँ, प्रणव शिंदे जी ने हमें एक मैसेज किया था जो कि हमारी आज की जो लव यू जिंदगी की जो थीम थी वो मंडे के बारे में थी। तो उस बारे में एक मज़ेदार उन्होंने बात कही है, आज अपनी मन की करो क्योंकि आज मंडे है। क्या बात है, क्या बात है। हर मंडे को अगर ये ख्याल हम साथ में रखकर मंडे गुजारे तो वो दिन बहुत ही खूबसूरत जाएगा जरूर। अविनाश जाधव जी हैं गंगा खेड़ मराठवाड़ा से, रजनीकांत पाटिल जी हैं वाड़वंड से, संदीप काये जी हैं नांदेड़ से, अजय साकरे जी इंदौर, सुनील गायकवाड़ जी जिन्हें भाऊ भी कहा जाता है, अशोक पाटिल जी हैं वर्ली से, श्रेयर राउत, महेश बोहरा जी हैं। तो इनके साथ साथ अगला हम गाना सुनते हैं क्योंकि अंदाज़े बयां से पहले जो है हमारे मराठी में न्यूज़ चलेंगे जो कि 6:05 से 6:15 तक चलेंगे। मैंने कुछ 5 मिनट कम कर दिए थे न्यूज़ के, लेकिन न्यूज़ सुनना ज़रूरी है। तो 6:15 तक चलेंगे न्यूज़ और फिर 6:15 से शुरू होगा अंदाज़े बयां कार्यक्रम। तो सुनते रहिए ये अगला गीत, उसके बाद फिर मिलेंगे। चलते चलते

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी को। शाम का इस शाम के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अंदाजे बयां शुरू हो चुका है और इस गाने के साथ ही आपने शायद गैस कर ही लिया होगा कि ये कार्यक्रम किन से जुड़ा होगा। जी हाँ, तो ये है मशहूर शायर शकील बदायूनी साहब। शकील बदायूनी साहब का जन्म जो है वो 3 अगस्त 1916 को हुआ था उत्तर प्रदेश के बदायूं इस गांव में। उन्हें शहंशाह गजल का भी कहा जाता था बॉलीवुड में। और आज का ये पूरा घंटा बेहद ही खास होगा क्योंकि आज हम अदब की महफिल में याद कर रहे हैं शकील बदायूनी साहब के, महान शायर और गीतकार शकील बदायूनी साहब। तो चलिए महफिल को आगे बढ़ाते हैं और एक खूबसूरत गीत के साथ।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स.
2: फिर एक बार स्वागत है दोस्तों. घड़ी के कांटे 6:32 का समय दिखा रहे हैं और कार्यक्रम शुरू है अंदाजे बयां. मैं शकील दिल का हूं तर्जुमा कि मोहब्बतों का हूं राजदा. मुझे फक्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं. शकील बदायूनी साहब वो एक ऐसे दौर के शायर थे जब लोग समाज के दुखों पर लिख रहे थे, लेकिन शकील साहब ने सिर्फ इश्क को अपनी शायरी का जरिया बनाया. उनका एक बहुत ही मशहूर सा जो शेर है वो मैं यहां सुनाता हूं. हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे.

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: फिर एक बार स्वागत है आपका 107.1 FM रेनबो पर. शो है अंदाजे बया. दोस्तों, शकील बदायूनी साहब ने जब फिल्म मुगले आजम के गाने लिखे तो वो हमेशा के लिए अमर हो गए. उनकी शायरी में जो सादगी और गहरा दर्द था वो किसी और में कहा. उनके लिखे कुछ लाइंस आज भी सच्चे प्रेमियों की जुबां पर रहते हैं. मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए.

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: हमें जिनके दीद की आस थी वो मिले तो राह में यूं मिले, मैं नजर उठा के तड़प गया, वो नजर उठा के गुजर गए। तेरे बगैर अजब दिल का आलम है, चराग सैकड़ों जलते हैं, रोशनी कम है। शकील साहब की उस ऐतिहासिक विरासत के बाद आज का आधुनिक सूफी संगीत भी उसी रूहानियत को आगे बढ़ा रहा है। जब शब्द सीधे रूह से निकलते हैं तो वो कव्वाली या सूफी कलाम बन जाते हैं। चलिए, अब समय हो रहा है इस कार्यक्रम से विदा लेने का आपकी। इसके बाद 7 बजे समाचार पेश होंगे और ठीक 7:10 पर शुरू होगा आपका लिसनर्स चॉइस कार्यक्रम हम तुम। तो अभी हमें आपकी व्हाट्सएप से आपकी फरमाइशें भेजिए, हम प्ले करेंगे। सुनते रहिए FM रेनबो 107.1 म्यूजिकली योर्स।

तो दो गानों के साथ मैं यानी आपका दोस्त आरजे आदित्य ने शुरू किया है रिक्वेस्ट जो शो होता है हम तुम। ओपनिंग थोड़ी कड़क नहीं थी हमेशा की तरह, माफ कीजिए, लेकिन गानों से मैंने शुरुआत की है और गानों से ही ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। मैं कम बोलूंगा, आपके गाने ज्यादा बजेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो पहले दो गाने थे, ये इनकी फरमाइश थी, दीपा पालकर जी ने फरमाइश की थी, 14वीं का चांद वो खूबसूरत सा गाना, और उसके बाद मैंने तेरे लिए जो गाना था वो मैंने बजाया था प्रदीप अनंत कृष्णन जी चेंबूर से, जिन्होंने फरमाइश की थी उनके लिए।

यह तो सभी के लिए था, लेकिन फरमाइश मैंने उनकी सुनी। तो अगला जो गीत है वो है, सुनिए ना, मैं क्यों बताऊं।

वेलकम बैक दोस्तों, कार्यक्रम शुरू है हम तुम। घड़ी में समय हुआ है 7:30 और इससे पहले दो गाने जो हमने प्ले किए थे वो थे चेतन कुमार जी ने फरमाइश की थी बरसोरे मेघा की और तारों का चमकता। ये जो गीत था वो ममता जायसवाल जी ने फरमाइश की थी, वो बहुत ही पुरानी हमारी लिसनर है ऐसा उन्होंने लिखा था। अभी साथ ही साथ इसके बाद विजेंद्र घाटोल जी का गाना प्ले होगा और साथ साथ अजय साखरे जी का भी जो कि इंदौर से हैं, विजय घाटोल जी अकोला से हैं, तो इनके गाने प्ले करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं मीना जी हैं, विट्ठल मुंगसे जी हैं अहिल्या नगर से, बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद भरत वर्मा, बंटी बबली वर्मा, बठेना पाटन जिला से दुर्ग छत्तीसगढ़। तो इनकी फरमाइशें भी आई हुई हैं, कुछ मैसेजेस भी आए हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम ज़रूर सुनाएंगे आपको उनके मैसेजेस और कुछ बढ़िया से किस्से उन्होंने भेजे हुए हैं। तो शुरू करते हैं इन गीतों के साथ।

फिर एक बार स्वागत है आप सभी का हम तुम कार्यक्रम में। तो इन ये जो दोनों गाने जो थे वो फरमाइश की थी बलकरण वर्मा जी, और अभी इसके बाद जो गाने प्ले होंगे वो पंकज मोहड़ जी अमरावती से हैं, और शैलेश विक्रम चेतन ये ठाणे से हैं, प्रमोद चिंचोलकर जी हैं जिन्होंने अपने एक खास दोस्त को ये गाना जो फरमाइश की है वो डेडिकेट किया हुआ है। तो अभी अभी फ्रेंडशिप डे ख़त्म हुआ है और उन्होंने फ्रेंड को एक गाना डेडिकेट किया हुआ है, तो शुरू करते हैं उन्हीं के गाने से, मनाते हैं फ्रेंडशिप डे इस गाने के साथ, क्या कहते हैं?

वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आदित्य धाईगुड़े। और आखिरी कुछ पल बचे हैं इस कार्यक्रम के, इसके बाद जो है 8 बजे शुरू होगा इंग्लिश शो, इंग्लिश गानों का गीतों का कार्यक्रम। और उससे पहले मैं सुनाने जा रहा हूं कुछ और धमाकेदार गाने, कुछ हमारे जो नियमित जो हमारे कार्यक्रम सुनते हैं रोज, शायद हर पल हमारे एफएम रेनबो 107.1 के साथ बिताते होंगे। ऐसे कुछ लिसनर्स हैं जो कभी नाराज हो रह सकते हैं कि मैं उनके गाने प्ले नहीं कर पाया समय की पाबंदी की वजह से, लेकिन आप ज़रूर हमारा साथ ना छोड़िए, क्योंकि हम आप ही के लिए हैं और हम आप ही के गाने यहाँ प्ले करने बैठे हैं। और बस समय की कुछ कमी है, तो अभी ज़्यादा वक्त ज़ायर ना करते हुए मैं अगले गीत प्ले करूँगा। प्रणव शिंदे जी की फरमाइश है और साथ ही साथ अजय साखरे जी इंदौर से जो है उनकी भी फरमाइश हम पूरी करेंगे। सुनते रहिए अगला गीत।

स्कॉटलैंड में 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का रोमांच अब थम चुका है। कम खेलों वाले संक्षिप्त और अनूठे संस्करण में भी भारत के जाबाज खिलाड़ियों ने तिरंगे की शान को पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा रखा। दरअसल ग्लासगो में जब नियम बदले गए, खेल बदले गए और कुश्ती, बैडमिंटन, शूटिंग, आर्चरी, टेबल टेनिस और क्रिकेट को जगह नहीं मिली तो हर किसी ने सोचा कि इन खेलों के नहीं रहने से भारत खेलों की औपचारिक शुरुआत से पहले ही पदक की दौड़ में पिछड़ गया है। लेकिन तब शायद ऐसा सोचने वाले ये भूल गए कि भारतीय खिलाड़ियों का यकीन चुनौतियों से डरने में नहीं बल्कि नया इतिहास रचने में है। भारतीय एथलीट अपनी सहूलियत से नहीं अपने हौसले से विरोधियों को हराते हैं। तमाम मुश्किलों के बाद भी भारतीय दल ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य समेत कुल 39 पदक अपने नाम किए और पदक तालिका में चौथे स्थान पर कब्जा किया। मेडल्स की इस रेस में वक्त इस बात का गवाह बन गया कि भारतीय मुक्केबाजों ने ग्लासगो की बॉक्सिंग रिंग को पदक जीतने का सबसे बड़ा मंच बना दिया। अपने मुक्कों के दमदार प्रहार से विरोधियों को बेदम करने वाले हमारे मुक्केबाजों ने एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक समेत 10 पदक जीतकर इतिहास लिख दिया। अपने अब तक के सबसे सफल बॉक्सिंग अभियान में जीतने की जिद रखने वाली भारत की बेटियों ने अपने पुरुष साथियों को भी मेडल जीतने की होड़ में पीछे छोड़ दिया। प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास और अरुंधति चौधरी ने जहां महिला वर्ग में तिरंगे को आसमान की ऊंचाइयों पर लहराया, दूसरी तरफ पुरुषों में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल के मुक्कों के सामने विरोधी नतमस्तक हो गए। लेकिन इतिहास सिर्फ बॉक्सिंग रिंग में ही नहीं बल्कि जूडो मैट पर भी लिखा गया। इस खेल में मेडल तो मिलता रहा था लेकिन पदक की स्वर्णिम चमक पहुंच से दूर थी। इस बार अस्मिता डे ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में वह कर दिखाया जो इससे पहले कोई भारतीय जूडो का नहीं कर पाया था। उन्होंने जूडो में भारत को राष्ट्रमंडल खेलों का पहला स्वर्ण पदक दिलाया। इसके बाद तो टीम जैसे नए जोश और उमंग से भर गई। तभी तो पहली स्वर्णिम सफलता के कुछ ही देर बाद हर्ष सिंह ने पुरुषों के वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर सफलता को दोगुना कर दिया। एक सच ये भी है कि इन तमाम सफलताओं की नींव इन खेलों की शुरुआत में ही पड़ गई थी जब गोल्डन गर्ल मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में देश को पहला सोना दिलाया। एक बार जीत का ये सिलसिला जो शुरू हुआ तो वो लगातार आगे बढ़ता चला गया। ट्रैक एंड फील्ड पर भी हमारे खिलाड़ियों की चमक फीकी नहीं पड़ी। चोट के बाद वापसी कर रहे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर देश को निराश नहीं किया और जैवलिन थ्रो में रजत पदक अपने नाम किया। 10 इवेंट वाले डेकाथलान में तेजस्वी शंकर ने भले ही ब्रॉन्ज मेडल जीता लेकिन ये किसी स्वर्ण से कम नहीं था। डेकाथलान जैसे मुश्किल खेल में पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय खिलाड़ी बने। लेकिन इस बार असली सनसनी तो पैरा एथलीट रहे। दिलीप महादू गावित ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.71 सेकंड का नया गेम्स रिकॉर्ड बनाकर कमाल ही कर दिया। शर्मिला धनखड़ और सुमन राणा ने भी शॉटपुट में सोने के पदक पर निशाना साधा। भारत की कामयाबी के सफर के साथ ही कई और नाम भी रहे। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे धुरंधरों ने साबित कर दिया कि खेल चाहे जो भी हो, जहां भी हो, भारतीय खिलाड़ियों का जज्बा कभी कम नहीं होता। कहानी यही खत्म नहीं होती बल्कि ये सफर आगे बढ़ चला है। भले ही कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के समापन का ऐलान हो गया है लेकिन ये कारवां अब ग्लासगो की प्रसिद्ध क्लाइड नदी से आगे अहमदाबाद की साबरमती नदी की तरफ बढ़ चला है। 2010 के बाद 2030 में हम दूसरी बार इन खेलों की मेजबानी करने जा रहे हैं। मतलब अगली बार जब दुनिया हमारे खिलाड़ियों से टकराएगी तो मैदान भी हमारा होगा और करोड़ों भारतीयों का समर्थन भी। स्कॉटलैंड की धरती पर इस बार अनेक आशाएं पूरी हुई, कई उम्मीदें टूटी और बहुत सारी नई आस भी जगी। कुल मिलाकर ग्लासगो में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन को कैसे आंका जा सकता है, इस प्रदर्शन से क्या नई उम्मीद जगती है, साथ ही अहमदाबाद में अतिथि देवो भव की हमारी प्राचीन परंपरा को एक बार फिर से साबित करने का कितना बड़ा मौका है, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ

0: मौजूद हैं दो खास मेहमान, खेल विश्लेषक और खास तौर पर पैरा गेम्स पर नजर रखने वाले महावीर रावत और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के साई के रिसर्च पॉलिसी एंड लर्निंग के हेड त्रिदीप भुइयां। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू।
2: थैंक यू
0: त्रिदीप। शुरुआत अगर आपसे करें तो सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि तमाम जो परिस्थितियां थी उसके बावजूद भी हमारे खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन आया उसकी कितनी सराहना बनती है?
3: देखिए, अगर जैसे आपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि ये कर्टेल्ड वर्जन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स थे, जिसमें बहुत सारे हमारे जो प्रीवियस एडिशंस में जहां हमारे मेडल आते थे, रेसलिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, आर्चरी के बावजूद हमने 39 मेडल्स घर लाए और उन्हीं 39 में से 13 गोल्ड हैं। उन 13 में से पहली बार बॉक्सिंग में हम 10 फाइनल में पहुंचे, जिसके बदौलत हमने 7 गोल्ड ट्रांसफॉर्म किया। वही पैरा एथलेटिक्स में भी पहली बार हमने स्वर्ण पदक जीता। अगर आप उस तरह से देखें एथलेटिक्स में, भले हमने इस बार स्वर्ण नहीं जीता, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें 10 मेडल, ये भारतीय एथलेटिक्स कंटिंजेंट की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है इन फॉरेन सॉइल। अगर आप टोटल मेडल से देखें, जूडो जैसे आपने कहा पहली बार स्वर्ण मेडल आए हैं और टोटल ऑफ 4 जो किसी एडिशन में नहीं आए, प्रीवियस बेस्ट हमारा 3 ही था। पैरा एथलेटिक्स में आज तक राष्ट्रमंडल खेल में हमने टोटल 7 मेडल जीते हैं, जो कि इसी एडिशन में हमने एक ही बार में ही 7 मेडल हमने अर्न किए हैं। तो अगर आप इन सब चीजों को देखें तो ओवरऑल आप ये राष्ट्रमंडल खेल हमारे लिए बहुत अच्छा रहा और मैं आशा करता हूं कि आने वाले राष्ट्रमंडल खेल में जब सारे गेम्स दोबारा आएंगे तो हमारी मेडल टैली में रैंकिंग भी इंप्रूव होगी।
0: महावीर, इस बार हमारी ताकत वाले कई खेल ग्लासगो में मौजूद नहीं थे, फिर भी 39 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर मौजूदगी हमारी बढ़ती खेल शक्ति का कितना बड़ा संकेत है?
2: देखिए, अगर हमारे लिए नहीं थे तो सभी के लिए नहीं थे, लेकिन ये है कि उन स्पोर्ट्स में हमारी ताकत बहुत ज्यादा थी, वहां से हम मेडल्स बहुत निकालते हैं। जैसे कि हमारे रेसलर्स, हर किसी को पता है जो भारतीय खेल जानता है कि कुश्ती हो, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे वेटलिफ्टिंग हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हमको भाते हैं, हमारे खिलाड़ियों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है कि 39 में से आपके मेडल जो गोल्ड है उसकी संख्या लगभग 30% है। तो ऐसा नहीं कि हम सिल्वर जीत के 39 लाए हैं या ब्रॉन्ज जीत के 39 तक पहुंचे हैं, हमारा गोल्ड का प्रेजेंस भी उतना रहा है। हाँ, ये मैं जरूर चाहूंगा कि अगर एथलेटिक्स में थोड़ा सा हमारे गोल्ड की संख्या बढ़ती तो हम जरूर और ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि देखिए मदर स्पोर्ट्स होते हैं एथलेटिक्स, स्विमिंग, जिमनास्टिक्स, ये मदर स्पोर्ट है। आपकी मेडल टैली कितनी ऊपर जाती है ये इन 3 स्पोर्ट्स से काफी डिफाइन होता है कि आप एथलेटिक्स में कैसा करते हैं, आप पूल में कैसा करते हैं और आप जिमनास्टिक में कैसा करते हैं। तो इन 3 खेलों में जब तक आप बहुत अच्छा नहीं करेंगे, और मैं हमेशा थोड़ा और इसलिए उम्मीद करता हूं कि अब मैं वो भारत नहीं देखता हूं जो कॉमनवेल्थ में इतने मेडल से खुश हो जाए, नंबर 4 पे आके खुश हो जाए या वेल्थ में खुश हो जाए। मैं उस भारत को देखता हूं जो वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है, जिसके यहां पे एक बहुत अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं, जहां पे यंग एथलीटों की बहुत ज्यादा भरमार है, टैलेंट को रिकवर किया जा रहा है। और मैं खुद, मेरे साथ साई के दोस्त मेरे बैठे हैं, बहुत सारी सुविधाएं प्लेयर्स को दी जा रही है, फॉरेन एक्सपोजर उनको बहुत दिया जा रहा है। तो जब तक आप बहुत अच्छा नहीं करेंगे मैं कभी संतुष्ट नहीं होऊंगा। तो वी कुड हैव डन मच बेटर, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स अब भारत वो बेंचमार्क लेके नहीं चलता है, अब हमारा बेंचमार्क वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स या ओलंपिक्स ही है, क्योंकि हमने बनाए हैं स्कीम्स जैसे टारगेट ओलंपिक पोडियम जो है, तो हम चाहते हैं कि हम ओलंपिक की तरफ ध्यान दें। सो आई एम हैप्पी कि बॉक्सिंग से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, हमारे पैरा खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा किया। खैर, पैरा से तो मैं उम्मीद कर ही रहा था, बट वी कुड हैव डन लिटिल मच बेटर इन एथलेटिक्स।
0: महावीर, इस बार हमारी ताकत वाले कई खेल ग्लासगो में मौजूद नहीं थे, फिर भी 39 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर भारत की मौजूदगी हमारी बढ़ती खेल शक्ति का कितना बड़ा संकेत है?
2: नहीं, खेल शक्ति हमारी बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये नतीजा है पिछले लगभग 7-8-10 सालों से जो एक सिलसिलेवार तरीके से स्कीम्स को पहले सोचा गया और फिर मैदान पे उसको इम्प्लीमेंट किया गया। जैसे मैं सोचता हूं कि एथलेटिक्स में थोड़ा सा अगर हम और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते, खिलाड़ियों ने तो अपनी जान झोंकी, 10 मेडल हमें आए, लेकिन गोल्ड का कॉलम हमारा खाली रह गया। इसमें जैवलिन, जिसमें भारत एक बहुत बड़ी फोर्स है और अब तो इतने सारे जैवलिन थ्रोअर्स हैं भारत में, वहां पे श्रीलंका के जो पथिरागे तरंगा आए हैं सुपर, मैंने उन्हें खुद साउथ एशियन एथलेटिक फेडरेशन जो रांची में हुआ था उसमें देखा था, एंड ही इज अ सुपर एथलीट। लेकिन उसके बाद जो भारत ने परफॉर्मेंस किया है कमेंडेबल है, वहां मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कुछ और बेटर कर सकते थे, क्योंकि देखिए अब वो जमाना चला गया जब हम कॉमनवेल्थ में गोल्ड लेके खुश हो जाते थे। अब हमारा जो मिशन है वो ओलंपिक्स है, हमारा मिशन अब वर्ल्ड चैंपियनशिप चैंपियनशिप है, हमारा मिशन अब एशियन गेम्स में डोमिनेट करना है। तो मैं खुश जरूर हूँ और इस बात से भी खुश हूँ कि 39 में से जो लगभग 33% है वो गोल्ड मेडल है। तो ऐसा नहीं कि हम ब्रॉन्ज या फिर

0: सिल्वर की संख्या की लेके 39 गई, हमने गोल्ड भी कमाए। हैट्स ऑफ टू ऑल द बॉक्सर्स, ऑल द पीपल इन द फेडरेशन जिन्होंने कमाल किया है। तो मैं खुश बहुत हूँ, लेकिन थोड़ा सा अगर एथलेटिक्स, स्विमिंग और जिमनास्टिक्स में और अच्छा किया होता, बिकॉज दीज आर मदर स्पोर्ट्स, और एशियन गेम्स में हमारी मेडल टैली कैसी होगी ये तीन गेम्स में काफी कुछ डिपेंड करता है। थोड़ा सा अगर वहां हमने परफॉर्म और अच्छा किया होता, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अब वो नया भारत देखता हूँ जहाँ हम सिर्फ कॉमनवेल्थ से खुश नहीं है, हमें ओलंपिक्स में मेडल चाहिए।
1: तो जैसा कि महावीर ने कहा, त्रिदीप की मुक्केबाजों ने तो इस बार कमाल ही कर दिया, ऐसे दमदार पंच पड़े कि एक ही दिन में मेडल टैली का पूरा गणित बदल गया। क्या बॉक्सिंग में इतने अच्छे प्रदर्शन की पहले से हम उम्मीद कर रहे थे?
2: देखिए, जैसे पिछले पेरिस ओलंपिक्स के बाद जो हमारे बॉक्सिंग में परफॉर्मेंस रहा, तो फेडरेशन ने उसमें काम किया। जैसे उन्होंने एक फॉरेन कोच लाए वापस, सैंटियागो, जो पहले हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर भी रहे हैं बॉक्सिंग फेडरेशन के, वो एक्सक्लूसिवली दोबारा आए सिस्टम में जहां वो पहले से बॉक्सर्स को जानते थे, और इन्होंने इस बार फोकस सिर्फ फीमेल बॉक्सर्स पे किया है। अगर आप प्रीवियसली भी अगर आप हमारी परफॉर्मेंसेस देखें तो हमारी वुमेन बॉक्सर हमेशा डोमिनेंट रही है मेल के कंपैरिजन में। तो अगर उस हिसाब से देखें, 7 लड़कियों की कैटेगरीज थी वेट, जिसमें से हम लोग 6 में फाइनल पहुंचे हैं, वो इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। और उन 6 में से हमने 5 में स्वर्ण पदक जीता है। तो बेसिकली अगर आप लड़कियों के साइड में देखें तो ये मैं बोल सकता हूँ, और जो महावीर जी भी एग्री करेंगे, इट वॉज अ टोटल डोमिनेशन। बट उधर लड़कों की तरफ देखें तो जैसे बहुत सारे डेब्यूटेंट, नरेंद्र, वो जो एक वेटरन बॉक्सर है, वो पहले भी मेडल ला चुके हैं, उन्होंने अपना दोबारा मेडल लाला, लेकिन जैसे पहली बार डेब्यूटान जा रहे हैं अंकुश, वो वापस स्वर्ण पदक लेके आए हैं, जिन्होंने डेफिनेटली हमारे मेडल टैली को एनहांस किया है। और अगर आप देखें, जैसे आपने बताया, बॉक्सिंग के बाउट्स ही ऐसे रखे थे कि सारे सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स और फाइनल्स एक ही दिन थे, तो वो तो हम लोगों ने पहले ही एक्सपेक्ट किया था कि भले हम मेडल टैली में अभी पीछे हैं, एक समय पे हम लोग 10वें नंबर पे थे, जहां नाइजीरिया, स्कॉटलैंड, कनाडा, ये हमसे आगे थे। जैसे ही लेकिन बॉक्सिंग के मेडल्स आने शुरू हुए, वो पलरा बदल गया। और मुझे बहुत खुशी है कि डिस्पाइट द नंबर ऑफ गेम्स हैव बीन रिड्यूस्ड, वी हैव स्टिल अचीव्ड आवर लास्ट रैंकिंग ऑफ 4th।
1: तो महावीर, बॉक्सिंग की मेडलिस्ट में जो नाम दिखाई देते हैं, और जैसा कि त्रिदीप ने बताया कि कुछ जाने पहचाने नाम हैं, तो कुछ ऐसे भी नए चेहरे थे जिनके बारे में बॉक्सिंग की दुनिया तो क्या कहें, लेकिन जो खेल प्रेमी है वो बहुत कुछ नहीं जानते थे। तो क्या माना जाए कि ये प्रदर्शन हमारी मजबूत बेंच स्ट्रेंथ और सुनहरे भविष्य का संकेत है?
0: इससे ज्यादा ये हमारी बेटर प्लानिंग का संकेत है कि आप प्लान करते हैं, एथलीट्स को एक्सपोजर देते हैं, उनको अच्छी कोचिंग, उनके हिसाब से प्लान करते हैं। और एक बात त्रिदीप कह रहे थे कि जो फीमेल बॉक्सर्स हैं, और मुझे पता नहीं मैं ये कब लोगों को कन्विंस कर पाऊंगा कि भारत अगर तभी डोमिनेट कर पाएगा जब हमारे फीमेल एथलीट्स डोमिनेट करेंगे। क्योंकि फीमेल, चाहे आप वेट लिफ्टिंग में हो, हम मीराबाई चानू को देखते हैं, हम बॉक्सर्स में हो तो मैरी कॉम ने पहला नाम लिया था, पीवी सिंधु है, तो जो हमारी फीमेल पार्टिसिपेशन है बॉक्सिंग में भी, उन्होंने बहुत अच्छे मेडल्स दिए हैं। वेट लिफ्टिंग में भी अगर आप देखें तो हमारी फीमेल पार्टिसिपेशन ही बहुत अच्छा रहा है, और उनका जो कन्वर्शन रेशियो है वो भी बहुत अच्छा रहा है। तो मैं इस बात से तो बहुत खुश हूं। और अभी भी अगर हमारा फीमेल स्पोर्ट्स के प्रति ग्रास रूट लेवल पे, हालांकि साई की तरफ से बैठे हैं दोस्त, अस्मिता लीग चल रही है जहां हर स्पोर्ट का एक अपना लीग होता है, आई थिंक वी शुड फोकस मोर ऑन फीमेल स्पोर्ट्स। और घरों को भी हम इस प्रोग्राम के माध्यम से ये एडवाइस करेंगे, ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी लड़कियों को मैदान पे भेजिए, क्योंकि हमारी लड़कियों में वो ताकत है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे डोमिनेट कर सकते हैं। आई टोटली सी कि अहमदाबाद जो 2030 होगा, या अहमदाबाद में क्यों जाओ, मैं जापान में देखिएगा जो हमारी फीमेल एथलीट्स हैं, दे विल एनी डे ओवर नंबर इन मेडल टैली टू आवर मेल कंपेटिटर्स।
1: जी, और जूडो में भी इस बार कमाल हुआ है क्योंकि डबल गोल्ड मेडल की कामयाबी, ये प्रदर्शन क्या जूडो में हमारी बढ़ती ताकत की तरफ इशारा कर रहा है?
2: देखिए, अगर जैसे आपने बताया कि हम हमेशा कॉम्बैट स्पोर्ट्स में हमेशा अच्छे रहे, मुक्केबाजी हो, रेसलिंग हो, जूडो में भी अगर आप देखें हमारा प्रदर्शन राष्ट्रमंडल खेल में, हमने मेडल लाए, बट हम लोग उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे थे जैसे हम बॉक्सिंग और रेसलिंग में किया। लेकिन इस बार अस्मिता दे, जो त्रिपुरा के इतने इंटीरियर जगह से आती हैं, उन्होंने देश का पहला स्वर्ण पदक जीत के अपने देश का तो नाम रोशन किया ही, बाकी अपने स्टेट से, जो इतने इंटीरियर एरिया से आ रहे हैं, तो फिर इससे जैसे महावीर जी बोल रहे हैं, जो हमारा टैलेंट पूल है इट्स नॉट इन द मेन सिटीज, इट्स इन स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। एंड सरकार तो कर ही रही है, उसके अलावा जितने और स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी ये ऐसा एक मैकेनिज्म डिवाइस करना पड़ेगा जिससे कोई भी एथलीट को अगर कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए खेलने के लिए वो कभी निराश ना हो। तो अब जैसे ही अस्मिता ने स्वर्ण लाया उसके पीछे हमारे हर्ष सिंह

0: जो पहले मेल एथलीट बने जिन्होंने स्वर्ण पदक लाया। जैसे बताया था, हमारी एक्सपेक्टेशन तुलिका और अवतार सिंह से भी थी, जो पहले खेल चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। लेकिन ये नए बच्चों ने जो आके जो ये प्रदर्शन दिया है, आई एम 100% श्योर कि हमारा फ्यूचर जूडो में अच्छा होगा।
1: इस बात को ना थोड़ा सा मैं आगे लेके जाता हूँ। अस्मिता कहाँ की लड़की है? त्रिपुरा की। जब कोई दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई से निकलता है ना, तो जो गांव में बैठे लड़के लड़कियां उनको लगते हैं वहां पे न जाने वो क्या खा रहे होंगे, न जाने क्या ट्रेनिंग कर रहे होंगे, न जाने वो कौन सा वहां पे एक सिस्टम होगा जिसकी वजह से चैंपियन निकल रहे हैं। लेकिन जब हरियाणा के एक छोटे से गांव से, जहां सूखा बहुत आता है, वहां से जब शर्मिला निकलती है, जब त्रिपुरा की एक ऐसी जगह से जहां जिसके फादर एक सिंपल इलेक्ट्रीशियन थे और उन्होंने अपनी बेटी अस्मिता को बहुत सिखाया, हालांकि 2025 में उनका देहांत हो गया और मैं अस्मिता का इंटरव्यू देख रहे थे, उनकी जब भी वो अपने पिताजी का नाम ले रही थी उनकी आंख में आंसू आ रहे थे। तो जब ये स्टोरीज गांव तक जाती हैं, जब ये स्टोरीज बाहर आती हैं, तब जो हमारे इंटीरियर के जो बच्चे उनको लगता है नहीं ये तो हम ही में से एक है, और जब आप में से एक निकल के जाता है तो तीन और अस्मिता आगे आके लड़ने की कोशिश करती हैं। फिर उन्हें ये नहीं लगता कि बॉम्बे, दिल्ली या फिर मद्रास या कोलकाता में कुछ जादू हो रहा है, जादू हमारे इंटीरियर में ही है। तो उनमें वो एक सेल्फ बिलीफ आता है कि वी कैन ऑल्सो डू दिस।
2: बिल्कुल। और महावीर लगे हाथ ये सवाल भी कि नीरज चोपड़ा ग्लासगो में गोल्ड तक तो नहीं पहुंच सके हैं, लेकिन इंजरी से वापसी के बाद उनका सिल्वर जीतना भी भारत के लिए क्या राहत की बात है?
1: अब जो आदमी ओलंपिक्स में गोल्ड जीत चुका हो उससे आप कॉमनवेल्थ में सिल्वर तो राहत नहीं मान सकते हैं, बट हमें एक एथलीट की उम्र भी देखनी होगी, वो अपने किस करियर के किस पड़ाव पे हैं, ये नीरज चोपड़ा अच्छा जान सकते हैं, उनके कोचेज अच्छे जान सकते हैं, लेकिन आई थिंक ही हैज बीन अ ग्रेट सर्वेंट फॉर इंडियन स्पोर्ट्स। नीरज चोपड़ा ने जो कमाल किया है वो मुझे नहीं लगता है कि इस देश की जो सूरत है, जो नक्शा है स्पोर्ट्स का बदलने में, उस एक अकेले लड़के ने आज देखिए आप, मैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जाता हूं, मैं त्यागराज जाता हूं, मैं छत्रसाल जाता हूं, सब जेवलिन फेंक रहे हैं, खेल में रेवोल्यूशन कैसे लाते हैं ये नीरज चोपड़ा ने दिखाया। तो अब वो उनमें क्या वो बात है ये सिर्फ नीरज चोपड़ा जानेंगे, क्योंकि उन्होंने जो मुझे एक और चिंता की बात लगी कि नीरज चोपड़ा ने कहा कि मैं जब भी रन अप पे दौड़ रहा था ना मुझे डर लग रहा था। तो एक एथलीट को डरना नहीं चाहिए कि उनकी बॉडी कब ब्रेक हो जाएगी। तो वी शुड रिस्पेक्ट हिम, वो बहुत कुछ उन्होंने दे दिया है, अब उनसे जितना कुछ और आ जाए ये पॉजिटिव है।
0: अब मैं इस पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, जैसे ग्लासगो में अगर आप देखें तो कंडीशंस वेर आल्सो नॉट इजी, इट वाज वेरी कोल्ड और वहां पे हेडविंड आ रहा था जिसके तहत वो डिस्टेंस नहीं जा रहे थे। अगर आप श्रीलंकन को भी देखें, उन्होंने सिर्फ एक ही लेजिटिमेट थ्रो मारा जिसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और ये जो फील्ड ऑफ एथलीट्स जिन्होंने जैवलिन पे कम्पीट किया कॉमनवेल्थ गेम्स, ये एज गुड एज द वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक। इट हैड एंडरसन पीटर्स जो पहले के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, केश ऑन वॉलकर्ट जो पिछले बार टोक्यो के वर्ल्ड चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल जीता है, फिर अर्शद नदीम जो ओलंपिक चैंपियन है वो भी रह चुके हैं। बहुत डिफिकल्ट फील था, इसमें पुराने जाने माने एथलीट्स 90 प्लस थ्रोअर्स भी थे जो उस दिन स्ट्रगल कर रहे थे। बट वही में से अगर आप देखें नीरज के साथ यशवीर जो अपना डेब्यू कर रहा था, पहला उनका कॉमनवेल्थ गेम्स, और उन्होंने मेडल लाए। अगर हम इसी की बात करें, आप देखिए जैवलिन में 3-4 सालों में हमें कितने अलग अलग मेडलिस्ट मिले हैं। आप एशियन गेम्स दोबारा पिछले वाले में जाइए, वहां किशोर कुमार जेना आए थे जिन्होंने सिल्वर मेडल लिया था। पिछले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में सचिन यादव आए थे जिन्होंने नीरज को भी पछाड़ा था और फोर्थ फिनिश किया था। सो दिस शोज दैट द लेवल ऑफ बेंच स्ट्रेंथ इन जैवलिन हैज इंप्रूव्ड, एंड एज महावीर जी हैज सेड, इट जस्ट रिक्वायर्स अ रेवोल्यूशन फॉर इट टू डू बेटर एट द हायर स्टेज।
2: और त्रिदीप तेजस्विन शंकर ने तो कमाल ही कर दिया, हाई जंप में इंजरी के कारण बीच में ही स्पर्धा से हट गए, इसके बावजूद डेकाथलान जैसे मुश्किल इवेंट में उनका पदक जीतना, ये तो बड़ी तारीफ उनकी बनती है।
0: एकदम डेफिनेटली, जैसे कि बर्मिंगम गेम्स में तेजस्विन सिल्वर मेडल लेके आए थे हाई जंप में, बट डेकाथलान को जैसे एथलेटिक्स का बोलते हैं मास्टर इवेंट, क्योंकि इसमें आपको एक नहीं दो दिन कम्पीट करने पड़ते हैं और 10 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तेजस्विन जो कि इन द लास्ट टू इयर्स उन्होंने अपना फोकस हाई जंप से थोड़ा डिकैथलॉन में लाया है, जिसके तहत उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, एशियन चैंपियनशिप में भी मेडल लाए हैं, और डिकैथलॉन में इस बार वो पहले इंडियन बने हैं जो डिकैथलॉन में उन्होंने मेडल लाया है, और उसके बावजूद वो पहले इंडियन भी बने हैं जो दो डिफरेंट इवेंट में उन्होंने मेडल जीता है। तो अगर आप तेजस्विन की बात बोले, तेजस्विन को मैंने बहुत करीबी से कैंप में भी देखा है, वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ही ट्रेन करते हैं, दिल्ली का लड़का है, बट वो लड़का लेकिन बहुत एजुकेटेड है, वो उसको पता है कि एक एथलीट को अपने बॉडी के साथ क्या करना चाहिए, कैसे ट्रेन करना चाहिए, कब उसको पीक करना चाहिए, कब वो ऑफ सीजन होता है। तो ऐसे स्मार्ट एथलीट अगर और आते रहेंगे तो हमारी

0: ऐसे मेडल टैली बढ़ती ही रहेंगी
1: जी। और महावीर, पैरा खिलाड़ियों ने भी इस बार कमाल कर दिया, कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल पर कब्जा किया, जिनमें 3 गोल्ड मेडल भी शामिल रहे। आपकी खास नजर रहती है पैरा गेम्स पर, तो ये प्रदर्शन सचमुच ऐतिहासिक कहा जा सकता
2: है? ऐतिहासिक भी है लेकिन सरप्राइजिंग नहीं है। पिछले 5-10 साल में अगर आप देखें, कोई एक स्पोर्ट जिसने बहुत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की है वो है पैरा स्पोर्ट्स। रियो 2016 में हमारे 4 मेडल थे, एक गोल्ड बाय हमारे प्रेसिडेंट देवेंद्र झाझड़िया, मरियप्पन का गोल्ड था, दीपा मलिक जी का सिल्वर था और वरुण भाटी का ब्रॉन्ज था। 4 मेडल लेके हम आए। उसके बाद हम टोक्यो में गए तो हम 4 से 17-19 पहुंचे और अब हम 29 पहुंचे हैं पेरिस में। ये मैं ओलंपिक्स की बात कर रहा हूं। और हमें तो पता भी नहीं रहता कि हमारा इवेंट कौन सा होगा, क्योंकि पैरा में क्या होता है कि सारे इवेंट तो वो देते नहीं है। अगर एथलेटिक्स भी देंगे तो वो 100 देंगे, 200-400 नहीं देंगे। तो इट्स कॉमनवेल्थ गेम्स में वो एक इंक्लूसिवनेस की वजह से पैरा स्पोर्ट्स को इंक्लूड करते हैं और इवेंट्स वो 5-6 महीने पहले पता चलते हैं कि ये इवेंट्स वहां पे होंगे। दिलीप की कहानी में बताऊं, दिलीप 400 मीटर के रनर है, वो 100 मीटर के रनर नहीं है। लेकिन जब हमने देखा कि दिलीप गवित वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमारे जो एथलेटिक्स के चेयरमैन सत्यनारायण जी हैं, उन्होंने दिलीप के कोच से बात की कि आप इसे 3 महीने 100 मीटर के लिए ट्रेन कीजिए। और उस लड़की ने, उसको अवसर मिला 100 मीटर दौड़ने का और उसने 10.71, कैन यू बीट 10.71? हमारे गुरिंदर वीर के 10.39 है,
1: बिल्कुल।
2: और दिलीप का एक हाथ नहीं है फिर भी वो 10.71 क्रॉस गया। और उसके जो लास्ट के 50 मीटर अगर आप देखो, अमेजिंग। जैसे यूसेन बोल्ट की, ही इज अ बैड स्टार्टर लेकिन ही इज अ ग्रेट फिनिशर। दिलीप ने भी बहुत, स्टार्ट इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन आखिर का 50 मिनट मेरे ख्याल से उन्होंने 5-5.5 सेकंड में खत्म किया। और वैसे ही शर्मिला की स्टोरी, एक कहानी महिला की और जो बताती है कि महिला शक्ति क्या नहीं कर सकती है। शी रिफ्यूज टू गेट डिफीटेड इन लाइफ। पहली शादी हुई, अब्यूजिव मैरिज था, पति ने घर से बाहर निकाल दिया, हार नहीं मानी, अपनी 2 बच्चों के साथ वो बाहर चली गई। जब से शर्मिला पैदा हुई तब से उनको पता चला कि उनकी माँ की आंखें नहीं, उन्होंने गोल्ड अपनी माँ को डेडिकेट किया। तो ये सब कहानी है। देखिए पैरा में आप जितना जाएंगे उतने आपको लगेगा यार ये तो यहाँ हर कोई एक कहानी है। तो आई एम वेरी हैप्पी, अभी तक के जो टोटल कॉमनवेल्थ में थे वो मेडल एक तरफ और इस बार के जो कॉमनवेल्थ मेडल है वो हमारे एक तरफ। बट हैट्स ऑफ टू द पीपल हु आर प्लानिंग दिस। हमने इवेंट देख लिए थे कि कौन से इवेंट है। हमारे दोनों फौजी जो हैं, जियाल और सुमन राणा, दोनों मेडलिस्ट हैं। और ये भी एक कहानी है कि जो फौज में इंजर्ड हो जाते हैं, जो हमारे फोर्सेज में इंजर्ड हो जाते हैं, आप कृपया पैरा स्पोर्ट्स की तरफ आइए और वहां पे अपना फ्यूचर बनाए। क्योंकि आप फिट तो हैं, आप वहां पे बहुत सारे अच्छा परिश्रम भी कर चुके हैं, आप यू आर वेरी फिट मेंटली एंड फिजिकली, बट ड्यू टू ऑन ड्यूटी आपकी कुछ डिसेबिलिटी आ गई है, तो आप पैरा स्पोर्ट्स में आइए और अपने देश का झंडा फौज में नहीं तो खेलों में आप ऊपर कीजिए। और सुमन राणा इसका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने शॉटपुट में गोल्ड जीता है।
1: जी महावीर, आपकी बातों से और प्रदर्शन से दोनों मिलाकर ऐसा लगता है कि पैरा स्पोर्ट्स में काफी कुछ काम हो रहा है
2: पूरा, और सरकार का इसमें पूरा। मैं हमेशा कहना चाहूंगा कि जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है, नेशनल गेम्स होता है, यूनिवर्सिटी गेम्स होता है, सरकार ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी कराया है और एक नहीं 2 बार कराया, और मैं सुनने में आ रहा हूं कि जल्दी 3rd एडिशन भी होने वाला है। तो ये खिलाड़ी आते हैं, उनको टीवी पे अपना गेम देखते हैं, तो सबसे पहले तो इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाना चाहिए, जिन्होंने पहले तो विकलांग शब्द हटाया, दिव्यांग शब्द रखा, थोड़ी क्रेडिबिलिटी दी। किस प्रधानमंत्री ने लोगों से मुलाकात की? लोग अक्सर क्या होते थे, जीते हुए एथलीट आते थे, उनसे मिलते थे, फोटो खिंचाते, खत्म हो जाते थे। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्रेंड शुरू किया कि अगर मैं एबल बॉडी के एथलीट से मिल रहा हूं तो मैं पैरा के एथलीट से भी मिलूंगा। वो उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं जाने से पहले, जीतने के बाद। तो उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया है कि नहीं, आप इस सिस्टम का हिस्सा हो। तमाम स्कीम्स जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया चलाती है, चाहे वो टॉप्स हो, वो सब में पैरा खिलाड़ी शामिल हैं। तो हमारे पैरा एथलीट्स को भी उतना ही फॉरेन एक्सपोजर मिल रहा है, उतना ही बजट मिल रहा है, ACTC में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी उतना ही है जितना की नॉर्मल बॉडी का है। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट और उसका डोमिनेंस अब हमें दिखने लग गया है मेडल टैली में।
1: जी, और प्रदीप, कुछ ऐसे खेल जिसमें प्रदर्शन उतना अच्छा रहा नहीं, बॉल्स, स्विमिंग, साइकिलिंग, जिमनास्टिक्स में उम्मीदों के अनुरूप हम प्रदर्शन नहीं कर सके, इन खेलों में सिर्फ पार्टिसिपेशन नहीं काफी है या इन पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है?
3: अगर बॉल्स की बात करें तो पिछली बार बर्मिंगम में हमारे 2 मेडल थे, लेकिन इस बार जिन इवेंट्स में हमारे मेडल्स थे वो इस एडिशन में नहीं थे, तो जिसके कारण बॉल्स में हमें एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम हो गई। बाकी अगर हम बोले इवेंट जैसे साइकिलिंग और जिमनास्टिक्स, यहाँ पे हमारा जिमनास्टिक में दीपा कर्माकर वाज द लास्ट वन टू गेट अस अ मेडल 2014। उसके बाद से हमारा जिमनास्टिक में थोड़ा पलरा कम ही रहा है, बट उम्मीद है कि आने वाले

गेम्स में वो इम्प्रूव होगा। सिमिलरली साइकिलिंग, अगर आप देखें साइकिलिंग एथलेटिक्स, ये ऐसे इवेंट हैं जो एशियन लेवल पे नहीं है जितने राष्ट्रमंडल में, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर आप एथलेटिक्स में अगर अभी 10 मेडल है, आप उसको एशियन गेम्स में देखेंगे तो वो डबल होगा या ट्रिपल होगा। लेकिन वही अगर आप जो वेट लिफ्टिंग के जहां 8 मेडल दिख रहे हैं, आपको हो सकता है एशियन गेम्स में 0 दिखे, क्योंकि हमने 1998 से

0: जहां हमने थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा उसमें इंप्रूव कर पाए।
1: तो महावीर, 20 साल बाद 2030 में भारत में फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स की वापसी होने वाली है। खेलों का फ्लैग भारत को सौंप दिया गया है। अब मेजबान के तौर पर हमारी बड़ी जिम्मेदारी होगी, और जिस तरह से कुश्ती, बैडमिंटन, शूटिंग, आर्चरी जैसे खेलों की गैर मौजूदगी के बावजूद हमने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, तो अगला कॉमनवेल्थ गेम्स हमारे खिलाड़ियों के लिए कितना बड़ा मौका होगा?
2: नहीं, मौका तो होगा ही, हम होस्ट भी हैं, हम सबके दोस्त भी होंगे और हम सबसे ज्यादा टॉपर भी होंगे, इसी उम्मीद में हम करते हैं। क्योंकि अहमदाबाद में है और गुजरात में, इसीलिए है कि मैं 20 साल गुजरात में मैंने बचपन के गुजारे हैं, इसलिए मैंने चौकस तरीके से या विश्वास है कि गुजरात में आ वक्त जो गेम्स थे ये सुपर डुपर हिट थे। और मैंने देखा हर सांगी जी वहां ऑलरेडी पहुंचे हुए, पीटी उषा जी वहां पे मौजूद हैं, उन्होंने फ्लैग को लिया और एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई नो एंड माई फ्रेंड फ्रॉम साई वुड ऑल्सो नो कि काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इन राष्ट्रमंडल खेलों में हमारी पूरी टीम गई थी ये स्टडी करने के लिए कि क्या कुछ वहां पे करना चाहिए, क्या कुछ होता है और उसको अब इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि हम होस्ट की तरह से तो किसी को निराश नहीं करेंगे, जो हमने कभी नहीं किया है, लेकिन मैं परफॉर्मेंस की वाइज बिल्कुल मेरी ये दिली इच्छा है कि हम ऑस्ट्रेलिया को इसमें जमकर टक्कर दें।
0: और जैसे महावीर जी ने कहा है, और इस बार हमारा चांस भी रहेगा क्योंकि हम लोग मेजबानी कर रहे हैं, जिसके तहत हमें सारी डिसिप्लिन में खेलने का मौका भी मिलेगा, नंबर ऑफ एथलीट्स भी बढ़ेंगे। अगर आपको अगर याद है 2010 में जब हमने मेजबानी की थी तो हम मेडल टैली में सेकंड आए, वो हमारा आज तक का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। और जैसे महावीर जी बोल रहे हैं तो उम्मीद है कि 2030 में हम सेकंड से टॉप में आए।
1: जी, तो एक सवाल यहां तो बनता है ना कि 101 पदक हमने दिल्ली में जीते थे, क्या सेंचुरी इस बार लगेगी और वो आंकड़ा भी इस बार पार करेंगे हम?
0: उम्मीद तो बहुत है, सरकार अपने एंड से बहुत ट्राई कर रही है, जैसे स्कीम जहां टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो फोकस्ड करती है सिर्फ एलीट एथलीट पे, फिर आपके नेशनल कोचिंग कैंप जो होती है ACTC के थ्रू, और इवन ग्रास रूट में भी जहां खेलो इंडिया इनिशिएटिव्स के नीति के थ्रू इतना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं तो बोलूंगा कि हमारा भविष्य बहुत ही सिक्योर लगता है। और बीइंग अ होस्ट अहमदाबाद में, आई एम 100% श्योर कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। 100 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे कि नहीं वो तो समय ही बताएंगे।
1: और महावीर, चलते चलते ये बात भी होती है ना कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 हमारे ओलंपिक 2036 के मेजबानी के लिए रास्ता साफ करने का कितना बड़ा मौका बन सकता है।
2: नहीं, तब तक एलोकेट हो जाएंगे इतनी देर तक कोई नहीं छोड़ता है। और लेकिन जिस तरीके से भारत ने पिछले 1-2 सालों में बहुत सारे चैंपियनशिप अहमदाबाद में ही परफॉर्म किए हैं, पूरा प्रोत्साहन सरकार से मिल रहा है कि कितनी भी बड़ी टूर्नामेंट हो आप इंडिया में करके दिखाए, हमने करके दिखाया। तो बाय द टाइम 2030 होपफुली 2036 ऑलरेडी अनाउंस हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि 101 मेडल आए थे, 101 से ज्यादा शुभ आंकड़ा होता है 111 का, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अहमदाबाद, क्योंकि सारी शुभ जगहों की एक पहचान होती है, तो 111 मेडल मैं उम्मीद कर रहा हूँ अहमदाबाद में जरूर मिल जाए।
0: 111 वही नंबर था जो हमने पैरा एशियन में पिछली बार लेके आए थे।
1: तो ग्लासगो में कल रात कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आधिकारिक तौर पर समापन हुआ और भारत ने 2030 में अहमदाबाद में होने वाले गेम्स के शताब्दी संस्करण की मेजबानी की जिम्मेदारी संभाली। हाइड्रो में हुए समापन समारोह में स्कॉटलैंड ने भारत को जिम्मेदारी सौंपी। इस दौरान ओलंपियन नीरज चोपड़ा और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा की मौजूदगी में कॉमनवेल्थ का झंडा आधिकारिक तौर पर भारत को सौंपा गया। इसके बाद भारत ने मशहूर गायक संगीतकार शंकर महादेवन के नेतृत्व में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ अहमदाबाद 2030 की अपनी यात्रा शुरू की। इसके साथ ही ग्लासगो से कॉमनवेल्थ गेम्स का कारवां अहमदाबाद की तरफ बढ़ चला है। हमारी मेजबानी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो चलिए हम अभी से अपने एथलीट्स का हौसला बढ़ाने और 4 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाएं। खेल विश्लेषक महावीर रावत जी और टारगेट ओलंपिक पोडियम के रिसर्च पॉलिसी एंड लर्निंग के हेड त्रिदीप भुइयां जी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद
0: धन्यवाद।
1: फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ मुझे यानी धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति। फिर मिलने के वादे के साथ नमस्कार।
3: The Commonwealth Games.

0: मैं जागृति शर्मा। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह विधेयक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान कर विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंक कर बही साक्ष्य विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को जब मौका दिया जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते।
3: सुप्रीम कोर्ट ने जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था कम से कम बिल में हिस्सा तो ले, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है।
0: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की।
4: लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
5: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत FIR बंद करने के लिए

0: उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
1: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया।
2: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उधर बिहार में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन सुराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया।
3: दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सीट अपने नाम कर ली है। मतगणना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की समीक्षा करेगी। उन्होंने चुनाव में भीतरघात का भी आरोप लगाया और कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की भावना के साथ काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता ने विकास और भरोसे के पक्ष में मतदान किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा चरित्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की नींव है। ओडिशा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों से नैतिक, कुशल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने का आह्वान किया।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम उड़ीसा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की नींव है। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से लड़कियों, आदिवासी छात्रों और समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित ओडिशा के लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
5: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
5: एएफएचक्यू का

0: एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को कंटिन्यूटी, डोमेन स्पेशलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है, और इसके साथ ही सिविल मिलिट्री सिनर्जी को सुदृढ़ करने में भी AFHQ एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज की भूमिका का निर्वाह करता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग तथा व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि व्यापार, निवेश, दवाइयों, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में बातचीत हुई है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगी और साझा समृद्धि में योगदान देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसी कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। POJK से मिली रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
2: खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जांच करने और हिंसा की तत्काल, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और अधिक विकास की मांग के साथ शुरू हुए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही किसी बैठक की तैयारी है। ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ मध्यस्थों के जरिए बातचीत होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने इस दावे को गलत बताया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। लोकसभा पासेस बिल टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस फ्रॉम 33 to 37। राज्यसभा क्लियर्स लेजिस्लेशन टू सिंप्लीफाई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड एड्रेस पेमेंट डिलेज फेस्ड बाय एमएसएमईज। इन असेंबली बाय पोल्स, जनसुराज लीडर प्रशांत किशोर विन्स बांकीपुर सीट इन बिहार, बीजेपी रिटेन्स मांजलपुर इन गुजरात, कांग्रेस कीप्स दतिया इन मध्य प्रदेश। Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar expands cabinet, inducting 19 new ministers. Red alert issued for very heavy rainfall in Assam, Meghalaya, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. In POJK, situation worsens overnight as security forces open fire on protesters refusing to disperse. Young cyclist Harshita Jhakar becomes first Indian woman to feature at Tour de France Fama in Switzerland. And now the news in detail. The Lok Sabha today passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said the bill is an important step in that ongoing reform process within the judicial sector. The Lok Sabha was adjourned several times today amid protests by opposition parties over several issues. Earlier, when the House began its proceedings at 11 a.m, Speaker Om Birla congratulated the athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protest. Mr. Birla expressed concern over the deliberate disruptions by some opposition members. Minister of Statistics and Program Implementation Rao Inderjeet Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Bankers' Books Evidence Bill 2026. The Rajya Sabha today passed the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill amid ruckus. The bill aims to further amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. It aims to address payment delays and simplify dispute resolution. Our correspondent has more details.
4: Both the Houses of Parliament once again faced disruptions following opposition uproar over several issues, including alleged police action during a student's protest over the NEET issue. Lok Sabha was adjourned thrice, while the Rajya Sabha was adjourned twice. Due to the ruckus, question hour in both the Houses could not be taken up. However, amidst uproar, the Lok Sabha passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026. The bill aims to further amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. The Rajya Sabha passed the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026. It will amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 to address payment delays and simplify dispute resolution. Besides, the Indian Statistical Institute Bill 2026 and the Bankers Books Evidence Bill 2026 were also introduced in the Lok Sabha. With Anupam Mitra, this is Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
3: In assembly by-elections, Jansuraj leader Prashant Kishore has won the Bankipur seat in Bihar, while BJP has retained Manjalpur in Gujarat and Congress has kept Dathia constituency in Madhya Pradesh. Prashant Kishore defeated BJP candidate Neeraj Kumar by a margin of 19,324 votes, securing 64,151 votes. RJD candidate Rekha Kumari finished third with 14,273 votes and forfeited her security deposit. A report.
5: Prashant Kishore maintained a lead from the very first round of counting, which continued through all 31 rounds. He secured 41.23% of the total votes polled. BJP's Neeraj Kumar finished second with 34.40% of the votes, while RJD's Rekha Kumari secured 10.45%. The by-election was conducted following the resignation of former BJP MLA Nitin Nabin from the seat. The BJP has suffered its first defeat in the Bakipur Assembly constituency in 35 years. The by-election recorded a voter turnout of 34.31%, the lowest ever since the constituency came into existence in 2010. Nidhi Shree for Akashvani News, Patna.
3: In Gujarat, BJP candidate Satish Patel defeated his nearest rival Bhikabhai Rabari of the Congress with a margin of over 30,000 votes. We have a report from our correspondent.
6: After the completion of all the 20 rounds of counting, Bharatiya Janata Party candidate Satendrabhai Patel secured 55,481 votes, while Congress candidate Bhikabhai Rabari polled 24,850 votes. Only two candidates were in the fray for this seat, which is considered as a stronghold of BJP. Satish Patel, former councillor of Vadodara Municipal Corporation, said the people have once again reaffirmed their faith in BJP. The by-election, which recorded around 37.5% voter turnout across 260 polling stations on Friday, was necessitated following the passing of long-time BJP MLA Yogesh Patel. Aparna Khun, Akashvani News, Ahmedabad.
3: The Congress has kept the Datia seat in Madhya Pradesh, with the party candidate Ghanshyam Singh defeating his nearest rival Ashutosh Tiwari of the BJP by over 6,000 votes in the by-poll. More from a correspondent.
7: The Congress has won the Datia Assembly by election. It has defeated the Bharatiya Janata Party for the second time in a row on this seat. Congress candidate Ghanshyam Singh defeated BJP candidate Ashutosh Tiwari by 6,016 votes. After the counting, Congress workers celebrated the victory. On the other hand, BJP candidate Ashutosh Tiwari accepted the defeat. He said the party would review the election result. He also alleged internal sabotage and said party workers should remain committed to the party's value. Congress candidate Ghanshyam Singh said people had voted for development and trust. The Datia Assembly seat had fallen vacant after the membership of Congress MLA Rajendra Bharati was terminated. Abhinav Goyal, Akashvani News, Bhopal.
3: Voting for the by-polls to the three constituencies was held on the 30th of last month. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar expanded his cabinet today. Governor Thavarchand Gehlot administered the oath of office to 19 new ministers at a simple ceremony at Lok Bhavan in Bengaluru. D.K. Shivkumar assumed office as the Chief Minister on the 3rd of June, along with 13 other ministers. His cabinet size has now reached 33. The only woman legislator announced by All India Congress Committee, Gayatri Shanti Gowda, was not sworn in today, and another legislator, Manakal Vaidya, was replaced by S.S. Malikarjun at the last moment. Former Chief Minister Siddaramaiah was conspicuous with his absence at the swearing-in ceremony. Reacting to a few legislators expressing disappointment for not making it to the cabinet, Chief Minister D.K. Shivkumar said that it is not possible to accommodate everyone and assured them of opportunities in the future. The Tamil Nadu government has approached the Supreme Court seeking directions to the Karnataka government for immediate release of the share of Kaveri water to Tamil Nadu. Tamil Nadu government alleges that the quantum allocated to it by the Kaveri Water Regulation Committee, as well as that released by its neighbour Karnataka, was far less. A committee meeting held on the 28th of last month directed Karnataka to release 3,500 cusecs for 15 days, starting 29th of July, an order which was upheld by the Kaveri Water Management Authority later. The Parliamentary Standing Committee on Communication and Information Technology today met Meta officials in New Delhi regarding the temporary removal of Prime Minister Narendra Modi's video from Facebook. BJP MP and chairperson of the committee, Nishikant Dubey, criticized Meta India for removing the social media post of the Prime Minister. Talking to reporters after the meeting, Mr. Dubey said that the committee has demanded Meta CEO Mark Zuckerberg to apologize for this, and if he does not do so, then the safe harbor protection under Section 79 should be withdrawn from him. The BJP MP also accused Meta, YouTube and X of failing to adequately address issues related to their algorithms and content moderation. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today held a meeting with Uzbekistan's Foreign Minister Bakhtiar Saidov in Delhi. He highlighted that bilateral relations between India and Uzbekistan

There's a hobo with his three

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। समान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस

की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बाकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांति गौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत में विभिन्न देशों के 8 खिलाड़ियों के समूह का नेतृत्व किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: शबनम के आंसू फूल पर, ये तो वही किस्सा हुआ। शबनम के आंसू फूल पर, ये तो वही किस्सा हुआ। आंखें मेरी भीगी हुई, चेहरा तेरा उतरा हुआ। कहते हैं शायरी वो आईना है जिसमें हम अपने जज्बात देख सकते हैं। हर शेर हर मिसरा एक कहानी कहता है। कुछ शेर मोहब्बत को चंद लफ्जों में बयां कर देते हैं और कुछ मिसरे दिल के दर्द को बड़ी खूबसूरती से सजा कर हमारे सामने पेश होते हैं। और कुछ इसी तरीके से कुछ गम कुछ दर्द बड़े ही खूबसूरत अंदाज में 12 बजे तक इसी तरीके से बयां होंगे, खूबसूरत गजलों के साथ, खूबसूरत अल्फाजों के साथ। 12 बजे तक हम और आप साथ साथ। और फिलहाल एक खूबसूरत गजल है मेरे पास जो कि अब है आपके साथ। ज्यादा हो गया ना। चलिए एंजॉय दिस गजल। आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर मैं हूँ आपके साथ प्रियंका। प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल।
1: आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

तो जनाब दिल के साथ साथ जान भी दांव पर लगी होती है। प्रोग्राम चल रहा रंगे महफिल, मैं हूं आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। खूब पर्दा है चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं।

जहां मैं होने को ऐ दोस्त, यूं तो सब होगा। जहां मैं होने को ऐ दोस्त, यूं तो सब होगा। तेरे लबों पर मेरे लबों, ऐसा कब।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

0: same time. Do join us then. Till then, from the entire team, goodbye. Namaskar.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

प्रोग्राम चल रहे रंगे महफिल में हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। शबाब आ गया उस पर शबाब से पहले, शबाब आ गया उस पर शबाब से पहले, दिखाई दी मुझे ताबीर ख्वाब से पहले। जमाले यार से रोशन हुई मेरी दुनिया, वो चमकी दिल में किरण महताब से पहले। दिलो निगाह पे क्यों छा रहा है साकी, दिलो निगाह पे क्यों छा रहा है साकी, ये तेरी आँख का नशा शराब से पहले। न पेश नामा है जमाल कर अभी है जोश, न पेश नामा है अमाल कर अभी है जोश, हिसाब कैसा ये रोजे हिसाब से पहले।

बेचैन इस कदर था कि सोया न रात भर, बेचैन इस कदर था कि सोया न रात भर, पलकों से लिख रहा था तेरा नाम चांद पर।

जी हाँ, जिस खूबसूरती में सादगी झलकती हो उसके लिए तो दुआ ही करनी पड़ेगी। फिलहाल ये सफर यहीं तक और कुछ अल्फाजों के साथ और एक खूबसूरत गजल के साथ छोड़ के जाऊंगी मैं आपको। कहते हैं कि मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। मुंतजिर हूँ कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा एक इशारा करके। तो जनाब यही हौसला रखिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए और सुनते रहिए आपका अपना रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM रेनबो। ख्याल रखिएगा अपना।

अभी आप सुन रहे थे गजलों का हमारा कार्यक्रम, और अब से कुछ ही देर में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए हिंदी में समाचार, बस अब से कुछ ही पल में।

आकाशवाणी रेनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया गया। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने गुजरात के बड़ोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर विजयी रहे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज FIR को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के नहीं हटने पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली अब तक की पहली भारतीय महिला बनी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: always wherever you are. 102.6 आपके लिए.
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना. 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती.

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

एफएम मुख्य समाचार। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर विजयी रहे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मोनिशा चक्रवर्ती को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। वह विदेशी मुद्रा विनिमय और वित्तीय बाजार विनियमन से जुड़े विभागों का दायित्व संभालेंगी। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया में शुरू। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे।

0: आकाशवाणी,
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। 1:03 और 23 सेकंड का समय।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

बातें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR खर्च है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
4: ठीक है।
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।

0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, एसएमएस, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

एफएम मुख्य समाचार। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर विजयी रहे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी की है। हालांकि घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोब से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग सहित क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा की। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया में शुरू। तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: यो यो
2: अरे मेरा पेट्रोल पंप, ये टैंकी खाली है, भर दो ना इसे।
3: ये लो बॉटल और भर दो सबके ग्लास।
1: ये माल चलेगा नंबरी सेठ, रानी छाप है।
4: रानी छाप हो या राजा छाप, यारों को चालू माल नहीं चलता।
1: तो फिर क्या दारू के अड्डे पे झक मारने के लिए आया है?
4: यारों के मुंह मत लग लौंडिया।
1: मैं और तुम्हारे मुंह, जा मुंह धो गया।
4: आया तो मैं नहा के था, मगर तू यारों का ब्रांड नहीं।
2: ए लौंडिया, इधर तेरा दाल नहीं गलेगी। अपना उस्ताद है ना उस्ताद, बहुत ऊंची चीज है।
4: धंधे पे लग।
2: ओए आज रहो सोनियो ना क्या? अरे तेरे प्रेमी तो इधर है, हम। अरे हमें बिला प्रेम से
5: आरती मन मानती, कहना क्यों नहीं मानती, पाठशाला में छुट्टी हो गई, बस्ता क्यों

0: तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

एफएम मुख्य समाचार। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर विजयी रहे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग सहित क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा की। वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति के जोखिमों के बीच RBI की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक शुरू। बुधवार को नीति वक्तव्य जारी होगा। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया में शुरू। तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती। सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
6: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती,

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

जिसे तुम भटकना कहती हो ना मानसी, मैं उसे और जानने की तलाश कहता हूं, एक दूसरे को जानने की तलाश। मैं इस जमीन पे भटकता हूं कितनी सदियों से, गिरा है वक्त से कट के जो लम्हा उसकी तरह। वतन मिला तो गली के लिए भटकता रहा, गली में घर का निशान ढूंढता रहा बरसों। तुम्हारी रूह में अब जिस्म में भटकता हूं, तुम्ही से जन्मूं तो शायद मुझे पनाह मिले।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी रेनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर विजयी रहे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना

की। समिति ने मेटा के मुख्य अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाबी बाग पश्चिम मेट्रो स्टेशन पर पुराने कपड़ों के लिए एक दान केंद्र अर्पण का उद्घाटन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ नई वार्ता उसके लिए समझौता करने और उस पर अमरीकी हमलों को रोकने का अंतिम अवसर है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में अमेरिका की चिंताओं को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करने वाली वार्ता अगले एक दो दिनों में शुरू हो जाएगी। गाजा में बदलाव की देखरेख करने वाले बोर्ड ऑफ पीस के एक अधिकारी ने आज इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। एक बयान के अनुसार इस मुलाकात का एक मुख्य उद्देश्य हमास के साथ हुए नए निरस्त्रीकरण समझौते पर चर्चा करना था। आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया में शुरू। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली।